जब आप सच्ची लगन से उसमें खो जाते हैं तो वो बांसुरी की धुन वाकई में ही आपको नजर आने लगती है और सुनाई भी पड़ती है। और इस संसार में बहुत से लोग दूसरों में दोष ढूंढते रहते हैं। अगर हम अपना दोष और दूसरे का गुण देखने लगें तभी ईश्वर की प्राप्ति संभव हो सकती है। बस विश्वास से उसका नाम लेते रहें।

पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया ना कोई, ढाई अखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

भोर सुहानी, ये कार्यक्रम चल रहा है और इस कार्यक्रम में मैं हूं आपकी दोस्त वंदना चुग। ईश्वर सुनता है हम सबकी बातें, जब हम भी उसके आगे जिद करके बैठ जाते हैं तो वो हमारी फरियाद पूरी करने आ ही जाते हैं।

0: साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली पहुंच गए हैं। राजधानी रोम में हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया। श्री मोदी की ये 2 दिन की यात्रा भारत और इटली के बीच व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगी। इटली में भारत की राजदूत वाणी सरराजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा के आदान प्रदान तथा नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित 3रे भारत नॉर्डिक सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है।
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रूपए की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की ये योजना 1 जून से प्रभावी होगी। इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार में आरक्षण के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग की 66 श्रेणियों को अधिसूचित किया है। इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग ए का 10% और अन्य पिछड़ा वर्ग बी का 7% आरक्षण रद्द कर दिया गया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय आरजी कर दुष्कर्म हत्या मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर कल सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने

अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मामले में एक से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया है। भारतीय रेल ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका था। इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमरीका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शनिवार से भारत की 4 दिन की यात्रा पर रहेंगे। ये उनकी पहली भारत यात्रा होगी। अमेरिकी विदेश विभाग ने बताया कि श्री रूबियो कोलकाता, आगरा, जयपुर और नई दिल्ली की यात्रा करेंगे। नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास ने बताया कि श्री रूबियो 26 मई को क्वाड समूह की बैठक में शामिल होंगे। क्वाड समूह में ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका शामिल हैं। नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज से महात्मा गांधी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित 3D अवतार आगंतुकों के लिए खोल दिया गया है। आगंतुक महात्मा गांधी के 3D अवतार के साथ संवाद कर सकेंगे और अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से बापू की आत्मा को जीवंत कर सकेंगे। संग्रहालय का ये तीसरा AI संचालित इंटरैक्टिव होलो बॉक्स होगा। IPL क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ राजस्थान की प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना बनी हुई है। पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 220 रन बनाए। जवाब में राजस्थान रॉयल्स ने 5 गेंद शेष रहते ही लक्ष्य हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 93 रन की शानदार पारी खेली। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है।
0: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।

0: नेचर का बैलेंस इन सब के पीछे इन छोटी मेहनती वर्कर्स का साइलेंट कंट्रीब्यूशन होता है। कितना ब्यूटीफुल थॉट है ना। कभी कभी लाइफ में जो सबसे छोटा दिखता है उसकी अहमियत सबसे बड़ी होती है। ये हमारी दुनिया में हमें बहुत कुछ सिखा जाती हैं कि आप अपने काम में हार्डवर्क हो, कंसिस्टेंसी लाइए और बिना किसी कंप्लेन के अपने काम को करते जाइए। अगर आप कंप्लेन करना छोड़ दे, अपने काम को हार्डवर्क की तरह करें, कंसिस्टेंसी लाए, तो रियली आपको आपके काम का फल ज़रूर मिलेगा। तो ये छोटी सी टाइनी बी हमें बहुत कुछ सिखाती हैं, बहुत कुछ बिना कंप्लेन किए।
1: सो दैट्स एन अमेजिंग थिंग. जो भी आप बताए वो तो सही है. सो आप सभी लिसनर्स, आई वॉन्ट यू टू लिसन कैरफुली. एंड वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स विच हैपन्स बाई बीज, यू नो, प्रोटेक्ट द बीज एट ऑल कॉस्ट. बट वाई मे 28th? मोस्ट ऑफ थिंक दैट वाई इट इज मे 28th. कुछ है क्या ये टाइम पर मे 28th डेट बोल के? डिड अ बी साइन द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑन दिस डे? डू यू थिंक इट्स अ डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस? Yes, of course, because it was being established. This May 28th World Bee Day was established by the United Nations in 2017. So it serves as a reminder of the critical role bees and other pollinators play in sustaining our ecosystem. So this date was chosen to commemorate the birthday of Anton Yancey, a pioneer in beekeeping and an advocate for modern beekeeping techniques in the 18th century. Yes, Anton Yancey, born in Slovenia in 1734, is hailed as one of the greatest beekeepers of his time. His meticulous observations and innovations practices laid the foundation for modern apiculture. Yancey's legacy lives on not only in the practices of beekeepers worldwide, but also in the celebration of World Bee Day. So let's listen to an amazing track, Batami's Dil from E Jawani Hai Diwani, just for you listeners.

वेलकम बैक टू आकाशवाणी FM रेनबो 101.9 एंड आई एम योर आरजे रामचरण. सो यू जस्ट लिसन एन अमेजिंग ट्रैक परफेक्ट ज्यूट बाय एड शीरन. सो लेट्स गेट बैक टू आवर विंटेज वेलनेस. सो ई रोज मन शो निजंगा ओक टाइम कैप्सूल लांटिदंडी. वी आर टॉकिंग टू द 18 ईयर ओल्ड आवर हमारे कूल 75 ईयर ओल्ड लेजेंड्स who are relaxing with a morning paper and a warm cup of chai. Of course, it's 10:36. Probably, chai peene ka time bhi nahi hai, magar let's also talk about few things. Boss, aaj ka scene bahut hi amazing hai. ठीक है, आज हम कोई बोरिंग ज्ञान नहीं बताने वाले. सो प्लीज़ कोई भी लेक्चर सोच कर रेडियो बंद मत करना और ट्यून भी नहीं करना. टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रेडिशंस. सबको मालूम है ट्रेडिशंस के बारे में, सही है ना? सो बट वेट, ट्रेडिशन अंटे एको रिजिड एंड बोरिंग रूल्स कादंडी. मोस्ट ऑफ फील

देम लाइक राइट नाउ। एंड अगर ध्यान से देखो तो हमारे दादाजी और नानी के ट्रेडिशंस एक्चुअली सुपर कूल लाइफस्टाइल हैक्स थी। सो स्टे ट्यून्ड, चिल मारिए और एंजॉय कीजिए आज का सफर अबाउट ट्रेडिशंस। सो लेट्स लिसन अमेजिंग ट्रैक, श्रेया घोषाल, संग में श्रेया घोषाल ऑफ जावाला।

0: FM Rainbow 101.9 Musically yours.
1: You are listening to Akashvani FM Rainbow 101.9 and I'm your RJ Ram Charan. So we are talking about traditions ke bare mein baat kar rahe hain na. So let's also know few things about that. Let's talk about kulad. So kulad, kya aapko malum hai kulad ka matlab wo hai? Yes, of course, it's clay cups. पहले हम स्टेशन पर मिट्टी के कुल्हाड़ पे चाय पीते थे और पी के देते थे क्योंकि वो एको फ्रेंडली था. इस ज़माने हम प्लास्टिक कप्स पर आए. और एक बात ये है, बड़े बड़े केप्स में प्रीमियम ऑर्गेनिक एर्थवेयर मक्स के नाम पर वही मिट्टी का कुल्हाड़ 200 में बेचा जा रहा है. सो दैट्स अ ग्रेट थिंग, राइट? सो इसके पीले पिछले 20-30 साल के पहले जो भी है वो टाइम पे, हमारा दादी और नानी का टाइम पे, जो भी आप ये कुल्हाड़ का क्ले कप जो भी है वो 1 रुपये 2 रुपये पे था, मगर अभी 200 में बेच रहे हो. सो दैट्स अ ग्रेट थिंग, राइट? सो जमाने फ़र्क है. सो बिफोर नोइंग मोर ट्रेडिशंस के बारे में, लेट्स लिसन टू दिस अमेजिंग ट्रैक Smile by Michael Jackson.

हेलो दोस्तों, तो हम बात कर रहे थे ट्रेडिशन के बारे में। अगर ट्रेडिशन कुछ मॉडर्न लाइफस्टाइल में बदल गए तो वो कैसा रहेगा? तो यू नो गाइस, सुबह सुबह जब मैं घर पे बड़ों को सुकून से चाय पीते हुए देखती हूँ तो एक बहुत ही प्यारी फीलिंग आती है। दे हैव स्पेंड देयर एंटायर लाइव्स मेकिंग आवर ड्रीम्स कम ट्रू। हमारे लिए उन्होंने अपनी जिंदगी का हर कीमती पल जिया है। पर अक्सर क्या होता है, टाइम पासेस, पीपल स्टार्ट नेग्लेक्टिंग देयर ओन लाइफस्टाइल एंड हेल्थ। उन्हें लगता है अब उनकी उम्र हो गई है, अब शरीर पहले जैसा नहीं रहा। बट ऑनेस्टली, हैप्पीनेस और हेल्थ की कोई एक्सपायर डेट नहीं होती। लाइफ इज़ ब्यूटिफुल एट एवरी सिंगल स्टेज। इसी उत्साह को बरकरार रखकर हम फिर मिलेंगे एक सूथिंग से गाने के बाद।

तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे हैप्पीनेस और हेल्थ की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। लाइफ इज ब्यूटिफुल एट एवरी सिंगल स्टेज। एग्जैक्टली, एज इज जस्ट अ नंबर। तो मैं हूँ आपके आरजे भूमिश्री, FM रेनबो 101.9 पर। और सुनिए, ये टॉपिक सिर्फ हमारे सीनियर सिटीजन्स के लिए नहीं है। दिस इज अ मैसिव वेकअप कॉल फॉर ऑल द यंगस्टर्स एंड एडल्ट्स टू। हमारे सीनियर्स को फिट रहना है, अपना स्वैग बरकरार रखना है, और हम एडल्ट्स को एक्टिव रहना है ताकि हम उनका हाथ पकड़कर उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। थिंक अबाउट इट गाइस, एक्टिव रहने का मतलब ये नहीं है कि आपको हैवी लिफ्टिंग करनी है या मैराथन भागना है। नो वे, हम बात कर रहे हैं छोटी छोटी प्यारी आदत की। इट कैन बी अ सिंपल इवनिंग स्ट्रोल, अ क्विक स्ट्रेचिंग सेशन वाइल लिसनिंग टू योर फेवरेट मेलोडीज, और इवन जस्ट प्लेइंग अ गेम ऑफ बैडमिंटन इन कोर्ट यार्ड विद योर फैमिली। मूवमेंट इज मेडिसिन। चाहे आपकी उम्र 20 साल हो या 80 साल,

वेलकम बैक टू हेलो नमस्ते आदाब। मैं हूँ आपकी होस्ट आरजे भूमि श्री और आप सुन रहे हो एफएम रेनबो 101.9। पहले बात करते हैं स्ट्रेंथनिंग की, मोबिलिटी और मसल डेंसिटी। तो सबके लिए ज़रूरी है, चाहे आपकी उम्र 20 साल या 80 साल, वही तो मैं बोल रही थी। ग्रोन अप्स एंड यूथ कैन गो फॉर रेगुलर पुशअप्स एंड प्लैंक्स, पर हमारे सुपर सिटीजन के लिए क्या कर सकते हैं? जेंटल पुशअप्स, सिट स्टैंड एक्सरसाइजेस और लाइट हैंड वेट मूवमेंट्स, ये छोटी छोटी चीज़ें आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग रख सकती है और बैलेंस बेहतर कर सकती है। मूवमेंट इज मेडिसिन, हैज ऑलवेज से। और इस फिटनेस की गाड़ी में फ्यूल क्या डलेगा?

एकदम क्लीन और न्यूट्रिशियस डाइट। सुबह सुबह हाई कैलोरी ऑयली पराठा को बाय बाय बोलो। लेट्स स्विच टू पावर पैक्ड फूड। सीनियर्स के लिए कैल्शियम रिच फूड्स जैसे दही, मिल्क एंड सॉफ्ट पनीर आर अमेजिंग फॉर बोन स्ट्रेंथ। और एडल्ट्स, आप लोग हाई प्रोटीन ऑप्शंस पर फोकस करो, जैसे स्प्राउट्स, एग्स एंड नट्स, टू कीप योर मेटाबॉलिज्म फ्लाइंग हाई। और होल फैमिली के लिए थंब रूल, हाइड्रेटेड रहो और सीजनल फ्रूट्स को अपनी ताली के हिस्सा बनाओ। तो सुनते हैं कुछ मज़ेदार बीट्स को।

लिविंग और जीरो वेस्ट लाइफस्टाइल जैसे बड़े बड़े वर्ड्स बहुत कूल लगते हैं ना। पीपल आर बाइंग एक्सपेंसिव ऑर्गेनिक जूट बैग्स टू लुक एनवायरमेंट कॉन्शियस। सो बट लुक एट द अल्टीमेट अपसाइक्लिंग हैक्स ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन हाउस होल्ड। जब आप हमारे घर पे जो भी है वो इंडियन हाउस होल्ड जो भी रहते हैं ना, इसके बारे में बात करेंगे हम। सो इन एवरी हाउस ऑफ आर होम्स एंड ऑल, वन सिंपल ट्रेडिशन वी यूज टू हैव, एक सॉफ्ट कॉटन साड़ी या पुरानी धोती, पहले कर्टिन्स या बेडशीट्स बनती है, सही है ना। सो बाद में थोड़ी और पुरानी हुए तो किचन का वाइपिंग क्लॉथ बनते हैं, और जब बिल्कुल खत्म हो जाते हैं तो उसका पोछा बन जाता है। सिंगल पीस ऑफ क्लॉथ मैक्सिमम यूटिलिटी, दिस इज ऑफ आर इंडियन ट्रेडिशंस वर्क्स एक्चुअली इन आवर फैमिलीज, लाइक इन आवर डे टू डे लाइफ। एंड वॉट अबाउट द आइकॉनिक ट्रेडिशन ऑफ कीपिंग ऑल ग्लोसरी प्लास्टिक कवर्स इंसाइड वन जॉइंट प्लास्टिक कवर फॉर फ्यूचर यूज़। वी यूज टू डू दिस हमारे घर पे, जब आप कुछ लाते ना, ये क्या बोलते हैं, स्टोर से जब आप कुछ भी लाते, वी यूज टू गेट दिस बैग्स प्लास्टिक कवर्स ना, वी यूज टू कीप इट इन वन प्लास्टिक बिग कवर। सो ऐसा कुछ बात है। सो बिफोर नोइंग मोर, लेट्स लिसन टू अमेजिंग ट्रैक।

0: Rainbow 101.9.
1: वेलकम बैक दोस्तों, यू आर लिसनिंग टू आकाशवाणी FM रेनबो 101.9 एंड आई एम योर आरजे रामचरण। चलो हम बात कर रहे हैं ट्रेडिशंस के बारे में और प्लास्टिक कवर्स जो भी बात कर रहे हैं हम, एंड वी ऑल्सो स्पोक अबाउट यू नो हाउस होल्ड थिंग्स। सो ऑफकोर्स वी हैव दिस इन आवर मिडिल क्लास होम्स दैट इज प्योर जीनियस रिसाइकलिंग एंड अ सर्कुलर इकोनॉमी। हमारे एल्डर्स ने प्लानेट को बचाना तब सीख लिया तब वन ग्लोबल वार्मिंग वॉजेंट इवन ए ट्रेंडिंग वर्ड। ओ जमाने पे इसके बारे में बात किया था उन लोगों, यू नो दैट टाइम्स वेन आर यू नो दादा दादी और नानी जो भी है ना, दे यूज टू स्पीक अबाउट दिस थिंग्स फ्यूचर्स। यू नो ट्रेडिशंस आर नॉट बोरिंग एक्चुअली, ये जो भी है इट्स नॉट बोरिंग। क्यों बोले तो वही है इस जमाने, ये जेन अल्फा जो भी जमाना है अब चल रहा, इस पे भी वी आर गेटिंग बैक टू दोज डेज। You know, this clay pots, bottles, and all these things are happening right now in this generation too. That's a great thing. So, which has already been implemented in our past, as I said. And they are pure common sense passed on with love. So, before knowing more about this generation's traditions, jo bhi chal raha, we'll listen to an amazing track and we'll get back to the traditions again.

Getting back to the show, you're with me, Ajay Ramcharan, on FM Rainbow 101.9. So we are talking about traditions. इसमें आपको बहुत बहुत ज़्यादा यू नो इन्फॉर्मेशन तो है. आउट ऑफ दैट टेरेसेस वी विल हैव ग्रीन हाउस सेट ऑन आवर टेरेस राइट एंड बैक हार्ड हर्ब गार्डन्स. वो बात तो सही है. सो हाउ अबाउट दिस ग्रीन हाउसेस ऑन टेरेस? आपको आप कुछ ऐसा किया क्या आपके घर पे ऊपर टेरेस पे? सो यू कैन यू नो टेक्स्ट अस ऑन अ व्हाट्सएप नंबर. एंड वेलकम बैक टू हैदराबाद. अपसाइक्लिंग से याद आया, आजकल यूथ में प्लांट पेरेंटिंग का बड़ा क्रेज है. लो मेंटेनेंस इंडोर सकलेंट्स खरीद कर लोग अपने रूम का एस्थेटिक सेट करते हैं, पर वहाँ अगर प्लांट थोड़ा सा भी ड्राई होने लगा तो पूरे यूट्यूब और रेडिट पर सॉल्यूशन ढूंढते हैं. सही है ना? अब अभी अभी इस जनरेशन पे हम जो भी आपको कुछ प्रॉब्लम है, कुछ सीखना है, कुछ ना कुछ देखना पड़ेगा बोले तो वी आर डायरेक्टली एंटरिंग इनटू यूट्यूब. दैट्स अ बेस्ट थिंग वेयर पीपल विल स्टार्ट यू नो सर्चिंग फॉर द थिंग्स एंड नोइंग अबाउट दैट इन डिटेल. कैसा करना, क्या करना, फ्रॉम बेसिक टू द अपलोड. एंड वहाँ हमारे घर के एल्डर्स का ट्रेडिशन देखो, एल्डर्स का ट्रेडिशन जो भी है, बिना किसी हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन के उन्हें पता होता है कि किचन का बचा हुआ चावल का पानी, धुली हुई दाल का पानी और सुबह की बची हुई छती पर अगर प्लांट्स में डाल दिया समझो तो बालकनी एक ऑर्गेनिक ग्रीन पैराडाइज बन जाता है. सही है ना? वी यूज़ टू डू दैट इन आवर होम्स टू. वी हैव गार्डन इन आर एट आर टेरेस एंड जो भी आपको बताया अभी यू नो बचा हुआ चावल का पानी और धुली हुए दाल का पानी जो भी है, वेन यू पुट इट इन द प्लांट्स एंड ऑल इट ग्रोज वेरी वेल. दैट्स गुड. एंड नो केमिकल फर्टिलाइजर्स. जो भी है हम घर पे टेरेस पे आप ग्रीन हाउस जो भी

plants and whatever it is, we'll have without chemicals actually, zero cost. कुछ भी खरीदने का ज़रूरी नहीं है यहाँ पे, एंड प्योर ब्यूटिफुल ग्रोथ. एंड वील ऑल्सो गेट दैट यू नो फील ऑफ दैट स्मेल एंड फील ऑफ दैट प्लांट्स वेन वी यू नो चेक इट आउट. सो बिफोर नोइंग मोर अबाउट ट्रेडिशंस, लेट्स लिसन टू एन अमेजिंग ट्रैक

0: वेलकम बैक दोस्तों, यू आर लिसनिंग टू आकाशवाणी एफ एम रेनबो 101.9 एंड आई योर आज रामचरण. वी ऑल्सो हैव विद अस यू नो हमारे स्टूडियो में वी हैव भूमिश्री एंड वी ऑल्सो हैव अदर्स राज्य समाज हम्स वी हैव. सो आपको कुछ बात करना क्या है भूमिश्री?
1: जी ज़रूर, क्यों नहीं। अब तक तो हमने फिजिकल फिटनेस के बारे में बात करी थी, लेकिन मेंटल हेल्थ भी इम्पोर्टेंट है ना रामचरण।
0: ज़रूर ज़रूर, मेंटल हेल्थ भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी जो भी यू नो चल रहा अभी इस जमान पे ज़मीन में आप जो भी बात है, मेंटल हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट. वी शुड चेक इट आउट एक्चुअली. यस यस यस, गो ऑन.
1: ओके, तो वेलकम बैक विद आरजे भूमिश्री। तो मेंटल फिटनेस इज इक्वली इम्पॉर्टेंट। वी नीड टू कीप अवर ब्रेन शार्प टू। ग्रुप एक्टिविटीज जैसे बोर्ड गेम्स खेलना, फैमिली पजल सॉल्व करना या दादी के बच

बचपन के किस्से दोबारा सुनना, ये सब दिमाग को एक्टिव रखता है ना। यंगस्टर्स, इंस्टेड ऑफ स्क्रोलिंग रील्स, टीच योर ग्रैंड पेरेंट्स हाउ टू यूज अ न्यू ऐप और प्ले एन ऑनलाइन क्विज विद देम। इट बिल्ड्स कनेक्शन एंड कीप्स देयर कॉग्निटिव हेल्थ सुपर फ्रेश। इवन म्यूजिक इज इक्वली इम्पॉर्टेंट टू कीप दिमाग की घंटी को थोड़ा रेस्ट देना पड़ता है ना। सो लेट्स लिसन टू सम मेलोडियस बीट्स।

सो वेलकम बैक टू एफएम रेनबो 101.9। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं हमारे शो के फाइनल ट्रैक पर। आप सुन रहे हो नमस्ते हेलो आदाब। सो लेट्स ब्रिज द जनरेशन गैप टुडे विद अ हेल्दी ट्विस्ट। घर के बड़ों को बोलो आराम की कुर्सी से छोड़े, और आप लोग ही अपना मोबाइल फोन छोड़कर, ठीक है? तो आपने आज सुबह अपनी फैमिली के साथ क्या एक्टिव हेल्दी काम किया? व्हाट्स कुकिंग फॉर लंच इन योर किचन टुडे? ज़रूर बताना। सो लेट्स लिसन टू मोर एवरग्रीन एनर्जी ट्रैक जो हर जनरेशन के दिल के जवान को कर दिए। स्टे एक्टिव एंड स्टे हैप्पी।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, परिवहन, समुद्री सुरक्षा, बंदरगाह संबंधी सहयोग और स्वच्छ ऊर्जा सहित प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो इटली की प्रधानमंत्री के साथ होने वाली बैठक को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि दोनों के बीच बातचीत में मुख्य रूप से भारत इटली संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि रोम पहुंचने पर उन्हें प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ रात के खाने पर मिलने का अवसर मिला, जिसके बाद उन्होंने मशहूर कोलोसियम का दौरा किया। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने कई विषयों पर अपने विचार साझा किए। प्रधानमंत्री ने इटली के प्रसिद्ध चित्रकार जियांपोलो टोमासिट्टी की भारतीय संस्कृति पर किए गए कार्यों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि कलाकार ने इटली के रोम दौरे में वाराणसी पर बनी अपनी विशेष पेंटिंग प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री टोमासिट्टी का भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम 4 दशकों से अधिक पुराना है। एक अन्य पोस्ट में श्री मोदी ने भारतीय नृत्य शैलियों के प्रति 5 इतालवी कलाकारों के प्रेम की भी प्रशंसा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यू बैक से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और तकनीकी सहयोग में साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने भारत दक्षिण कोरिया रक्षा उद्योग और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा साइबर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौतों का आदान प्रदान किया। इससे पहले श्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्र की सेवा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी।

0: चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज बीजिंग में द्विपक्षीय संबंधों, ईरान यूक्रेन संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहित प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वार्ता से बीजिंग और मॉस्को के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूती मिलेगी और संयुक्त राष्ट्र, दक्षिण अफ्रीका परिषद और ब्रिक्स जैसे मंचों के माध्यम से समन्वय बढ़ेगा। ये बैठक अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा के कुछ ही समय बाद हुई, जहां उन्होंने शी चिनफिंग से क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर चर्चा की थी। पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रूपये की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की ये योजना 1 जून से प्रभावी होगी। पंजाब पुलिस ने दुबई स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है, जो सीमावर्ती राज्य पंजाब और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मादक पदार्थों की तस्करी के लिए अबुधाबी से काम कर रहा था। अभियान के दौरान पुलिस ने 14 किलोग्राम मादक पदार्थों के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। आगे की जांच जारी है। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत में भीषण गर्मी को देखते हुए दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया गया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 0.35% की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 75,157 पर, जबकि निफ्टी 23,611 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi today said that he's looking forward to his meeting with his Italian counterpart Giorgia Meloni later today. He expressed hope that the talks between them will focus on strengthening India-Italy relations. In a social media post, Mr. Modi said that upon landing in Rome, he had the opportunity to meet Prime Minister Meloni over dinner, followed by a visit to the iconic Colosseum. He said both leaders exchanged perspectives on a wide range of subjects. The Prime Minister added that today's talks will continue their conversation on boosting India-Italy friendship. Meanwhile, PM Modi will hold talks with his Italian counterpart Giorgia Meloni and President Sergio Mattarella and discuss with them ways to boost India-Italy cooperation. PM Modi's visit will focus specially on the India-Middle East-Europe Economic Corridor, or IMEC. The Joint Strategic Action Plan 2025 to 2029 will also be reviewed. Mr. Modi will also be visiting the headquarters of the Food and Agriculture Organization, strengthening India's commitment to multilateralism as well as global food security. India-Italy ties have expanded with unprecedented momentum in recent years and have now reached a decisive stage. In a joint article written by Prime Minister Narendra Modi and his Italian counterpart Giorgia Meloni, the two leaders highlighted that relations between the countries have evolved from a cordial friendship into a special strategic partnership rooted in the values of freedom, democracy and a shared vision for the future. The leaders noted that at a time when the global order is undergoing profound changes, the India-Italy partnership is being guided by regular exchanges at the highest political and institutional levels. They said the partnership is acquiring a new dimension by combining the economic dynamism, societal creativity and centuries-old civilizational wisdom of both nations. The two leaders said their cooperation reflects a shared understanding that prosperity and security in the 21st century will depend on the ability of nations to innovate, manage energy transitions and strengthen strategic sovereignty. Defense Minister Rajnath Singh today held a meeting with his South Korean counterpart Ahn Ju-bak in Seoul. During the meeting, they discussed ways to further deepen India-South Korea defense industry and strategic cooperation with a shared commitment towards regional peace, stability and technological collaboration. In a social media post, Mr. Singh said it was a highly productive meeting as India and South Korea exchanged agreements on promoting defense cyber cooperation. The MOU was exchanged between the National Defense College of India, the Korea National Defense University and UN Peacekeeping

0: So now it's time in our studios, it's 12:10. So it's time to say good afternoon, listeners, and the time. It's the right time for our lunch, right? People start cooking and nice khushbu aate hain. So that's a great thing, right? So now, as we are speaking about traditions, इसके बारे में हम और कुछ बात करेंगे. फूड के बारे में बात करेंगे और यू नो फेस्टिवल रिचुअल्स के बारे में बात करेंगे. सो शमाशम, आपको कुछ बात करने का है क्या इसके बारे में, फूड
1: बिल्कुल
0: के बारे में?
1: बिल्कुल
0: प्लीज़
1: बिल्कुल.
0: प्लीज़.
1: गुड वेलकम बैक लिसनर्स. और अभी हो चुके हैं हमारे स्टूडियो में 12:11 और 32 सेकेंड. और इस खूबसूरत आफ्टरनून आर में बातें होंगी बिल्कुल समर ब्रिज जैसी, लाइट, रिफ्रेशिंग और फील गुड. दोस्तों, जैसे जैसे दिन गर्म होता जाता है ना, वैसे वैसे बॉडी को एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है, राइट? और इसी बात से याद आया, समर का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में नींबू पानी, छाछ और आम पन्ना तो आ ही जाता है. लेकिन लेकिन लेकिन एक ऐसा हिडन समर हीरो भी है जो शायद हर किसी की लिस्ट में नहीं होता, पर जिसने एक बार टेस्ट किया वो उसका फैन जरूर बन जाता है. सोचिए, चलिए मैं ही बताती हूँ. ताड़गुला. जी हाँ दोस्तों, कुछ लोग इसे आइस एप्पल के नाम से भी जानते हैं. नाम से ही कितना कूल कूल फील आता है ना, सुनते ही लगता है हाँ, सॉफ्ट, जूसी और नेचुरली रिफ्रेशिंग. यह समर सीजन का एक ऐसा फ्रूट है जो बॉडी को फ्रेश फील कराने के लिए जाना जाता है. हाँ दोस्तों, वैसे ऑनेस्टली बताइए, आप में से कितने लोगों ने इस समर ताड़गोला खाया है? मेरा मतलब है आइस एप्पल. और अगर खाया है तो डायरेक्ट फ्रूट पसंद आता है या फिर उसे फ्रीज में रखकर थोड़ा चिल्ड खाना पसंद है? दोस्तों, ताड़गोला जैसी चीजें हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद दिलाती है. गर्मी में सिर्फ एसी या कोल्ड ड्रिंक्स काफी नहीं होते, बॉडी को चाहिए रियल हाइड्रेशन, क्योंकि कई बार डिहाइड्रेशन क्वाइटली

जाता है, बिना वजह बिना थकान हमें लगने लगता है, थोड़ा हेडेक, हमारी लिप्स ड्राई हो जाती है, या अचानक मूड ऑफ होना, और हम सोचते हैं बस गर्मी लग रही है, लेकिन अक्सर बॉडी बस ये कह रही होती है, यार पानी पी लो, मुझे भी हाइड्रेट कर दो। तो एक क्विक सेल्फ चेक करते हैं, करते हैं आज सुबह से अपने कितने ग्लासेस पानी पिए हैं। चेक इट, 4 ग्लास, 6 ग्लास, या अभी तक प्रॉपरली काउंट ही नहीं किया। अगर नहीं किया है तो ये आपका प्यारा सा ऑन एयर रिमाइंडर है, अभी 1 गिलास पानी लीजिए और उसे पीजिए और खुद को हाइड्रेट कीजिए। पानी के साथ साथ छाछ, नारियल पानी और सीजनल फ्रूट्स और हमारा कूल हीरो तार गोला, ग्रेट ना? चलिए इसी बात पे, इसी रिफ्रेश थॉट के साथ सुनते हैं ब्रीजी ब्यूटीफुल ट्रैक।

0: यू आर लिसनिंग टू आकाशवाणी एफ एम रेनबो 101.9 एंड आई एम योर आरजे रामचरण। सो हम फूड के बारे में बात कर रहे हैं और यू नो आर पास्ट रिचुअल्स फेस्टिवल काइंड ऑफ थिंग इज हैपनिंग इन आवर स्टूडियो राइट नाउ। सो सी थिंक लाइक फॉर एग्जाम्पल समर के स्टार्टिंग में उगादी पचड़ी को हम डिफरेंट टेस्ट आ जाते हैं हमको। यू नो वील एड सम नीम जैगरी मैंगो टैमरिंड चिली एंड सॉल्ट अदर थिंग्स वी यूज टू ऐड इन दिस पचड़ी जो भी है हम बनाते हैं उगादी के टाइम पे। हमारे बॉडी के इम्यूनिटी को बदलते वेदर के लिए साइंटिफिकली तैयार करते हैं। दैट्स अ ग्रेट थिंग। यू नो वी हैव दैट रिचुअल्स ऑफ फूड्स इन आर यू नो हिंदी एंड यू नो हिंदू ट्रेडिशंस एंड अदर थिंग्स टू विच हैपन्स इन आवर डे टू डे लाइफ एंड फेस्टिवल्स टू। सो ट्रेडिशनल मानसून स्नैक्स में टिल सिसामी बोलते हैं। सिसामी और जागरी का यूज़ बॉडी को वार्म और हेल्थी रखता है। यू नो दैट व्हेन वी हैव दिस यू नो जागरी डेली और ट्वाइस इन ए डे इट गिव्स एन एनर्जी एट दिस राइट टाइम इन समर सीजन। एंड दिस इज़ नॉट जस्ट ओल्ड कस्टम, दिस इज़ टॉप नॉच हेल्थ केयर रैप्ड इन अ डिलीशियस ट्रेडिशन। आप क्या बोलते हैं शमाशम?
1: बिल्कुल बिल्कुल रामचरण, जैसे कि हर फेस्टिवल पे अपना एक फ्लेवर होता है ना, तो हमारे साउथ में जब उगादी आती है तो उसके साथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रेडिशन भी आता है, राइट? उगादी पचादी, मतलब इस तरह की चीज़ें। अब इंटरेस्टिंग बात ये है लिसनर्स कि ये कोई नॉर्मल डिश नहीं होती है कि हम हर दिन खा लें, नहीं। इसमें डिफरेंट टेस्ट मिक्स किए जाते हैं, स्वीट, सोर, बिटर, स्पाइसी और टैंगी। क्या मैंने सही कहा ना रामचरण?
0: यस यस ऑफ कोर्स।
1: और हर टेस्ट लाइफ का एक इमोशन को रिप्रेजेंट करते हैं। स्वीटनेस हैप्पी मोमेंट्स, बिटरनेस स्ट्रगल।

0: स्ट्रगल्स, सोरनेस, सरप्राइजेस, स्पाइस, एक्साइटमेंट, कितना डीप थॉट है ना। मतलब फेस्टिवल सिर्फ सेलिब्रेशन नहीं, लाइफ का लेसन भी क्वाइटली सिखा रहा होता है, राइट चिरन?
1: यू आर राइट एंड व्हाटएवर यू सेड इज राइट. जॉब जो भी आप बताए सही सही है. और हमारे स्टूडियो में अभी टाइम बज रहा है 12:30 हो गया. और यू आर लिसनिंग टू आकाशवाणी FM रेनबो 101.9.

0: Rainbow 101.9.
1: So welcome back, dosto. You are listening to Akashvani FM Rainbow 101.9, and I'm your Ajay in the studio. We also have other Ajay with us, Shamasham, and हम बात कर रहे हैं आम की अचार के बारे में. So Shamasham, आपको कुछ ऐसा experience हुआ आपके घर पे ये आम की अचार, you know, prepare करके या खाने के, या ऐसा कुछ है आपके घर पे?
2: हाँ बिल्कुल, जैसे मार्केट में कितना भी फैंसी पिकल बन जाए ना, मिल जाए रामचरण, लेकिन नानी या दादी के हाथ के जो अचार वाली फीलिंग होती है ना, वो कहीं नहीं मिलती है. और मेरी नानी के हाथ के अचार, ओ माय गॉड, वो टेस्ट मैं आज तक नहीं भूल सकती, और शायद अब वो मुझे मिल भी नहीं सकता क्योंकि मेरी नानी अब नहीं रही. चलिए कोई बात नहीं, अचार सिर्फ रेसिपी नहीं होता है रामचरण, उसमें ना पेशेंस होता है. धूप में सूखता हुआ आम, केयरफुली मिक्स होते हुए मसाले, और वो बार बार चेक करना, ढक्कन ठीक से बंद किया ना, कितना प्यारा हिडन, मतलब प्यार हिडन होता है उन छोटी छोटी बातों में. और लिसनर, सबसे इमोशनल पार्ट पता है क्या होता है? वो बड़ा सा मार्टबान, मतलब कि वो जो बड़ा सा शीशा होता है ना, जिसमें हमको अचार रखना होता है, देन उसको छुपाते हैं, ढकते हैं, शीशे का जार जिसे कहते हैं, जो किस

0: किचन के एक कोने में क्वाइटली रखा होता है और हर मील के साथ बस थोड़ा सा अचार पूरी प्लेट का टेस्ट चेंज कर देता है। सिंपल फूड भी स्पेशल लगने लगता है। दाल चावल पराठा कर्ड राइस और उसके साथ अचार। मैंने सही कहा ना रामचरण?
1: दैट्स ट्रू. जो भी आप बताए
0: हाँ
1: वो अचार हम एक क्या बोलते हैं, वील कीप इट इन अ पॉट एक्चुअली.
0: या
1: सो वील वेट फॉर 1-2 डेज. जो भी टेस्ट वैसे बाद में ऑफ रियली इट्स अमेजिंग एक्चुअली. वी यूज टू फील दैट व्हेन वी आर हैविंग
0: एंड
1: दैट इन यू नो
0: स्मेल।
1: दैट्स स्मेल एंड यू नो द टेस्ट ऑफ व्हेन टू डू दैट एज यू सेड. क्या बोलते हैं ये हार्ट रखते दिल जस्ट कीप द सोल इन द प्रिपेयरिंग वेल प्रिपेयरिंग दिस थिंग्स एक्चुअली
0: बिल्कुल
1: इट
0: बिल्कुल
1: हैपेंस. दैट्स अ ग्रेट थिंग विच हैपेंस इन आवर यू नो घर पे जो भी होता है चलते रहते हो. सो लेट्स टॉक मोर अबाउट दिस. बिफोर दैट लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड वी विल गेट बैक टू यू.

0: FM Rainbow 101.9 Musically yours.
1: Hello listeners, you're listening to Akashvani FM Rainbow 101.9 and I'm your Rajay Ramcharan. So the clock in our studios is about 8:01 in the afternoon, and now guys comes the most exciting part. अगली है सेगमेंट में यानी शार्प 1 पीएम को हम खोलने वाले हैं हमारे लाइव फोन लाइंस. सो तैयार रहिए अपने घर के ऐसी हाई स्मार्ट कूल और फन ट्रेडिशंस मुझसे शेयर करने के लिए. हम बात कर रहे हैं ट्रेडिशंस के बारे में और कुछ आपको शेयर करने का है तो यू कैन कॉल अस ऑन 0402323-0030 और 0402323-4821 एंड 0402970-4715. सो मैं हूँ आपके आरजे रामचरण, वेट कर रहा हूँ आपके लिए स्टूडियो पे. सो आई विल बी वेटिंग फॉर यू फॉर योर कॉल्स एट 1 पीएम

0: FM Rainbow 101.9 Musically yours.
1: वेलकम बैक दोस्तों, यू आर लिसनिंग टू आकाशवाणी एफ एम रेनबो 101.9. सो टाइम इन आवर स्टूडियोज इज 1 hour 2 minutes. इट्स जस्ट पासिंग अवे एंड आई एम वेटिंग फॉर यू इन स्टूडियोज फॉर योर कॉल्स. सो आई ऑलरेडी सेट यू, मैंने आपको बता दिया किसके बारे में आप बात करना बोल के. ट्रेडिशंस आर यू नो, जो भी आपको बोलने का है कुछ आपको, अरे घर पे हम ये बनाते बोल के कुछ आपको ऐसा कुछ बात करने का है, तो यू कैन कॉल अस ऑन 0402323-0030 और 0402323-4821 एंड वी ऑल्सो हैव अनदर नंबर 0402970-4715. सो लंच टाइम चल रहा है और जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, हमारे लाइव फोन लाइन्स आर ऑफिशियली ओपन राइट नाउ. सो मैं और हमारे आरजेस आपके कॉल्स के लिए स्टूडियो पे वेट कर रहे हैं. ठीक है, अगले एक घंटे तक माइक मेरा है पर आवाज़ आपका होगी, ज़रूर आपका होगी, क्योंकि आप ऑनलाइन एयर पे जाने का है. सो फास्ट फूड जनरेशन के चैम्पियंस और विंटेज एरा के हमारे रॉकस्टर्स, उठाइए अपना फ़ोन और डायल कीजिए हमारा नंबर को. आई जस्ट वॉन्ट टू गिव द नंबर्स.

0: आपके जानकारी के लिए नागपुर में भी 44-45 डिग्री धूप होता है, तो वहां पर हरेक व्यक्ति अपने जेब में प्याज रखता है।
1: ओह दैट्स नाइस सर।
0: और अपने कानों को रुमाल से बांधना है, सिर को और कानों को रुमाल से बांधना है, तो धूप का प्रभाव हमारे ऊपर इतना नहीं पड़ेगा। और एक बात मैं ये कहना चाहूंगा कि इन दिनों में, गर्मी के दिनों में, अगर से हम सत्तू पीते हैं, सत्तू यानी कि गेहूं होते हैं ना
1: सर,
0: गेहूं को भून कर लाना है और उसमें 1 किलो गेहूं में 1 किलो फुटाने की दाल मिला करके पीस कर लाना है।
1: जरूर सर।
0: जो आटा तैयार हो गया, इस आटे को पानी में गुड़ मिला करके इस आटे को मिला देना है, सेरेलैक जैसा बच्चों को खिलाते ना
1: सर,
0: उसके जैसा ही ये बनता है। ये अगर से हम खाएंगे या इसको पतला करके पिएंगे तो हमारा पेट बहुत ही शांत रहेगा, गर्मी का प्रभाव हम पर नहीं पड़ेगा।
1: श्योर सर।
0: साथ साथ है हमको ये मच्छी का यानी कि छाछ भी दिन में पीना है और कैरी का पन्ना पीना है, कैरी से बनाया हुआ पन्ना जो बनाते हैं हम उसको पीना है। और फ्रिज का पानी हम बिल्कुल नहीं पिएंगे, फ्रिज का पानी पीने से हमारा डाइजेशन खराब हो जाता है।
1: धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपके यू नो रेमेडीज के लिए, और जरूर फॉलो करेंगे सर, हर एक लिसनर पर।
0: आपने हमको समय दिया, मैं आपका आभारी हूँ। मैं आपका नाम जान सकता हूँ?
1: मेरा नाम रामचरण है सर।
0: अच्छा रामचरण जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा हमको। शायद अभी अभी आ रहे हैं आप?
1: यस सर।
0: अच्छा,
1: धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद सर, थैंक यू सर,
0: बहुत सारी शुभकामनाएं।
1: जरूर सर, जरूर। सो दैट्स ऑफ, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफ एम रेनबो 101.9 विथ मी आज रामचरण। सो लेट्स लिसन टू एन अमेजिंग ट्रैक बिफोर आंसरिंग टू अनदर कॉल।

परीक्षा पे चर्चा के 8th एडिशन के नए अंदाज में हो चुकी है शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्टूडेंट्स को दिए एग्जाम से जुड़े वैल्यूएबल टिप्स। आगे इस चर्चा से जुड़ेंगे अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स जैसे दीपिका पादुकोण, सद्गुरु इत्यादि, जो 7 नए एपिसोड में एडवाइस देंगे मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग के बारे में। तो देखना ना भूलें 12 फरवरी से रोज सुबह 10 बजे DD News और नरेंद्र मोदी YouTube चैनल पर।

ये आकाशवाणी हैदराबाद है, FM 101.9 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियोज की घड़ी में 9:30 हो चुके हैं। वक्त हुआ चला है उर्दू प्रोग्राम नए रंग का।

0: उर्दू प्रोग्राम नैरंग सुनने वाले हमारे सभी सामाइन को हमारा पुरखुलूस आदाब। सभी सामाइन का हम तहे दिल से हमारे बज़्म में खैर मकदम करते हैं। दोस्तों, इस तरह के इंसान बने जिस तरह के इंसान से हम मिलने की तमन्ना रखते हैं। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो अच्छाइयाँ वापस आपकी तरफ भी आती है। यही कुदरत का उसूल है। हमारे इसी खूबसूरत पैगाम के साथ सामाइन आज के नैरंग प्रोग्राम का आगाज करते हैं। आज के नैरंग की बज़्म में शामिल किए जाने वाले प्रोग्राम्स की तफसीलात कुछ इस तरह से हैं। हज़्ब दस्तूर बज़्म के आगाज पर पेश किया जाएगा हरफे ताबिंदा। इसके बाद मतसहल हमें जानो सिलसिले के तहत आप सुन सकेंगे तकरीर। फिर होगा सुरीले गीतों से सजा प्रोग्राम गीत सुरीले गाता जा। बज़्म के आखिर में हम आपको सुनाएंगे पयामे शब। और इस तरह रात 11 बजे नैरंग की बज़्म अपने इख्तिताम को पहुंचेगी। नैरंग की बज़्म का आगाज करते हैं हरफे ताबिंदा से। तहरीर वो पेशकश है मोहतरमा आयशा बुतुल की।
1: आज के हरफे ताबिंदा में मुस्तकिल मिजाजी की बात करेंगे। मुस्तकिल मिजाजी किसी भी शख्स की

0: कामयाब ज़िंदगी के हुसूल के लिए बहुत ज़रूरी है। ये इंसान की काबिलियत को निखारने और उसकी मंजिल की तरफ बढ़ने में अहम किरदार अदा करती है, लेकिन मुस्तकिल मिजाजी हासिल करना कोई आसान काम नहीं। ये मुस्तकिल मेहनत, अज़्म और ख़ुद एतमादी का तकाजा करती है। आज हम कुछ ऐसे पहलुओं पर रोशनी डालेंगे जो कि मुस्तकिल मिजाजी हासिल करने में हमारी मदद कर सकती है। सबसे पहले आता है ख़ुद आगाही। मुस्तकिल मिजाजी के लिए पहला कदम खुद आगाही है। खुद को जानना, अपनी ताकतों और कमज़ोरियों को पहचानना इंतहाई ज़रूरी है। जब हम अपने अहदाफ और मंजिलों के बारे में वाज़ेह होंगे तो अपनी मेहनत को सही सिमत में लगा सकेंगे। मुस्तकिल मिजाजी के लिए मकसद का तायुन भी इंतहाई ज़रूरी है। अपने मकासद को वाज़ेह और मखसूस रखने की कोशिश की जानी चाहिए। मकासद को इस तरह से मुरतब करना चाहिए कि उनकी पैमाइश की जा सके। मकासद हम अकसाम के होते हैं, जिनमें से एक है हकीकी मकासद। अपने मकासद को हकीकत पसंदाना रखें। बहुत ज़्यादा मुश्किल या नामुमकिन मकासद आपको मायूस कर सकते हैं। अपने मकासद के लिए एक वक्त मुकर्रर करें ताकि आप उन पर काम करने में तेज़ी ला सकें और उन मकासद को पूरा कर सकें। इसके साथ साथ वक्त का मुनज़्ज़म होना भी ज़रूरी है। रोज़ाना की एक रूटीन बनाई जाए और उस पर सख्ती से अमल किया जाए। अपने कामों को अहमियत के हिसाब से तरतीब दिया जाना भी इंतहाई ज़रूरी है। काम के दौरान वक्फा भी लेते रहना चाहिए ताकि तवन्नाई और तवज्जो दोनों बरकरार रहे। मुस्तकिल मिजाजी के लिए आदात की तश्कील भी दरकार है। मुस्बित आदात को अपनाना इंतहाई ज़रूरी है, जैसे कि रोज़ाना वर्जिश करनी चाहिए, सेहतमंद ग़िज़ा का इस्तेमाल करना चाहिए, वक्त पर सोना चाहिए वगैरह। नई आदात को तश्कील देने के लिए उन्हें अपनी मौजूदा रूटीन में शामिल किया जा सकता है। हौसला अफजाई का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि इंसान खुद की हौसला अफजाई करे, यानी अपने आप को हौसला दें और मनफी ख्यालात से बचें। अपनी छोटी बड़ी कामयाबियों का जश्न मनाएं, क्योंकि ये जश्न मजीद मेहनत की तरगीब देता है। ऐसे लोगों के साथ वक्त गुजारें जो आपको हौसला देते हैं और मुस्बित रहने में भी मदद करते हैं। मुस्तकिल मिजाजी के बेशुमार फवायद हैं। मुस्तकिल मिजाजी खुद एतमादी में इजाफा करती है और मेहनत करने का जज्बा पैदा करती है। मुस्तकिल मिजाजी के हुसूल के लिए कई मुश्किलात पेश आ सकती हैं। मायूसी से बचने के लिए अपनी कोशिशों को जारी रखना चाहिए और गलतियों से सीखना चाहिए। मनफी ख्यालात को पहचान कर उनसे निमटने की कोशिश की जा सकती है। याद रहे, मुस्तकिल मिजाजी हासिल करना किसी भी कामयाब ज़िंदगी के लिए नागुज़ैर है। ये मेहनत, सब्र और खुद एतमादी का तकाजा करती है, और जो तजावीज़ात पेश की गई हैं उन पर अमल करके हम अपनी मुस्तकिल मिजाजी में इजाफा कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। याद रखिएगा, हर शख्स के लिए मुस्तकिल मिजाजी हासिल करने का सफ़र मुख्तलिफ होता है, लेकिन अगर आप अपने मकासद पर काम करते हैं और मुश्किलात का सामना करने से नहीं घबराते हैं तो यकीनी तौर पर तमाम अहदाफ को हासिल किया जा सकता है।
1: समयन, अभी आप समाप्त कर रहे थे हरफे ताबिंदा। वाकई बहुत ही उम्दा बातें मोहतरमा आयशा ने हमें बताई हैं कि मुस्तकिल मिजाजी किस तरह इंसान को अपना खुद एहतिसाब करने यानी खुद आगाही हासिल करने में मददगार साबित होती हैं। बज़्म को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं मत सहल हमें जानो सिलसिले के तहत तकरीर बउनवान इफ़त मोहानी। तहरीर वो पेशकश है मोहतरमा सना अलमास की।
2: हैदराबाद की अदबी ख़वातीन के हलके में इफ़त मोहानी किसी तारुफ की मोहताज नहीं। वो एक कामयाब फिक्शन निगार की हैसियत से जानी जाती है। इनके नावल और अफसाने 70-80 की दहाइयों में काफ़ी मशहूर हुए। इनके मजामीन भी काफ़ी शौक से पढ़े जाते थे। इफ़त मोहानी का असली नाम खुर्शीद सुल्ताना है। वो 24 जुलाई साल 1937 को उत्तर प्रदेश के कस्बा मोहान जिला अमरोहा में पैदा हुई। वालिद का नाम सैयद बशार अहमद रिजवी है। इफ़त मोहानी कलमी नाम है जो कि मशहूर शायर हसरत मोहानी का दिया हुआ है। इनकी इब्तदाई तालीम हैदराबाद में हुई। मैट्रिक

एक इंटर और ग्रेजुएशन आला निशाना से कामयाब किया। उस्मानिया यूनिवर्सिटी आर्ट्स कॉलेज से एमए और बीएड की डिग्री हासिल की। इन्होंने एक कामयाब फिक्शन निगार के तौर पर अपने आप को मनवाया। नावल निगारी और अफसाना निगारी इनका महबूब मशगला था। इन्होंने चंद मजामीन भी तहरीर किए। इन्हें बचपन ही से कहानियां लिखने का बहुत शौक था। इनके अदबी सफर का आगाज 8 साल की उम्र में हुआ। वो महानामा मैजान के लिए बच्चों के सफ़े में कहानियां लिखती थी, जो कि नसीम अनहोनवी की इदारत में लखनऊ से शाये होता था। बाद में इन्हें ईमा पर नावल निगारी की इब्तिदा की। इनका पहला नावल सितम के सहारे नसीम अनहोनी ने महानामा हरीम में खस्तवार शाये किया। बाद में साल 1971 में ये नावल किताबी शक्ल में शाये हुई। बाद में इन्होंने 67 नावल लिखे और कहीं पीछे मुड़कर नहीं देखा। इनकी नावल निगारी के लिए उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी की जानिब से इन्हें अवार्ड अता किया गया। आंध्र प्रदेश उर्दू एकेडमी की जानिब से भी इन्हें बेस्ट उर्दू फिक्शन राइटर का अवार्ड अता किया गया। इनके तकरीबन सारे ही नावल नसीम बुक डिपो लखनऊ से शाये हुए। वो अपनी नावलों में साफ सुथरी और निखरी हुई जबान का इस्तेमाल करती थी। गंजलिक और मुश्किल हिंदी से गुरेज करती हैं। इन्होंने अपनी नावलों के जरिए खवातीन के मसाइल को उजागर किया। हालांकि इनकी पैदाइश उत्तर प्रदेश की है, लेकिन वो हैदराबादी तहजीब की दिलदारा हैं और अपनी नावलों और अफसानों के जरिए इन्होंने खूब शोहरत हासिल की। न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी इनके नावल काफी शौक से पढ़े जाते थे। इनका आखिरी नावल शफक के साये सन 1995 में नसीम बुक डिपो से शाये हुआ। इसके बाद इन्होंने लिखना छोड़ दिया। साल 2015 में शिकागो में इंतकाल हुआ और वहीं मदफून हैं। इनके चंद नावल ये हैं: सितम के सहारा, मोहब्बत नाम है गम का, दर्द व दर्मा, बेजबान, बुजदिल, हम तो जय हैं, हम तो जिए हैं तेरे लिए, आहों के गीत, शहर आरजू, सजा, सनम ले नाम भी आहिस्ता, फासले और मंजिल वगैरह वगैरह शामिल है। इफ़त मोहानी की नावल निगारी का मकसद इस्लाह माशरा है। अपनी कहानियों के ताल्लुक से मुसन्निफा खुद लिखती हैं, मेरी कहानियाँ हमेशा तामीरी होती हैं, जिन्हें दूसरे अल्फाज में मकसदी भी कहा जा सकता है। मैंने हमेशा एसार व शराफत नफ्स की कहानियाँ लिखी हैं। इफ़त मोहानी अपनी नावलों में निहायत सादा, दिलकश और सलीस उर्दू का इस्तेमाल करती हैं। इनकी नावलों में हमें फितरत का अकासी मिलता है। इन्होंने अपनी नावलों में हकीकत से करीब किरदारों को पेश किया है। कहानी पर इनकी गिरफ्त मजबूत होती है। जितने भी किरदार को वो पेश करती हैं, इनके साथ इंसाफ करती हैं और हर किरदार को इसके अंजाम तक पहुंचा कर ही दम लेती हैं। नावल चाहे कितना भी तवील हो, किरदारों को जोड़े रखती हैं। नावल के ख़त्म होने तक दिलचस्पी को बरकरार रखने में कामयाब हुई हैं। नावलों के किरदार अक्सर घरेलू किस्म के होते हैं और घर की चादर दीवारी के अंदर होने वाले वाकयात को लेकर नावल तहरीर करती हैं। इनकी नावलों में हीरो शरीफ और पाकबाज होते हैं, लेकिन अक्सर डरपोक, बुजदिल और बेहिम्मत भी होते हैं। लड़कियां हीरोइन मशरिकी इख्तदार, शर्म व हया वाली और तालीमी आफ्ता होती हैं। वो अपनी नावलों के जरिए जिंदगी की आला कदरों पर अमल करने का सबक देती हैं। जदीदियत को पेश करती हैं, लेकिन इनका कलम बेलिबास नहीं होता। उरियानियत और फहाशी से इनको दूर का भी वास्ता नहीं। मशहूर व मारूफ नक्कात एहतिशाम हुसैन ने महानामा निकत अलाहाबाद में इफ़त के मुतालिक लिखा था, नई उभारने वाली कलमकारों में सिर्फ उफ़त ही वो वाहिद कलमकारा है

0: जिसके कलम पर उरियानी का साया नहीं पड़ा। इनकी अक्सर नावलों में हीरो इंतहाई वजिया खूबसूरत तालीमी आफ्ता और आला खानदानों से ताल्लुक रखने वाला होता है। हीरोइन इस पर जान छिड़कती है। अक्सर नावलों में हमें हीरो का नाम खालिद मिलता है, ये एक इत्तेफाक भी हो सकता है। इफ़त मोहानी अदब बराए ज़िंदगी की तर्जमान हैं। इन्होंने अपनी नावलों में समाजी माशराती नफ्सियाती मसाइल के साथ साथ कौमी एकजहती को भी पेश किया है। इनकी नज़र में अदब का मकसद रोमानियत है। वो ऐसे किरदारों को पेश करती हैं जिसमें किसी का मकसद किसी को पाना होता है या किसी का होना होता है। हीरो और हीरोइन का असल मकसद शादी होता है। अगर इश्क का नाम हो जाए तो वो अक्सर किरदारों को मौत की नींद सुला देती हैं। इफ़त मोहानी न सिर्फ एक कामयाब नावल निगार है बल्कि अफसाना निगारी में भी इन्होंने शोहरत हासिल की। इनके अफसानों में भी समाजी माशराती और नफ्सियाती मसाइल मिलते हैं। इनका पहला अफसाना तमाशा सन 1965 में माहनामा 20वीं नई दिल्ली से शाये हुआ। इनके अफसाने ज़्यादातर पाकिज़ा आंचल नई दिल्ली माहनामा पूनम हैदराबाद से शाये हुए। इसके अलावा माहनामा सबा में भी इनके अफसाने किस्तवार शाये होते रहे, जिनमें काबिल ज़िक्र सोई मोहब्बत की राहें और प्यासा वगैरह शामिल है। इन्होंने तकरीबन 30 अफसाने लिखे और 3 नावलेट भी तहरीर किए, जिनमें चंद अफसानों के नाम ये हैं: तमाशा, सौदाई, मोहब्बत की राहें, प्यासा, घरौंदे। इसके अलावा हमें इनके लिखे हुए नावलेट में भी मोहब्बत की राहें, वापसी, मेरी एक उम्र तुझसे वाबस्ता है, जो माहनामा पाकिज़ा आंचल में नई दिल्ली से शाये हुए। इफ़त मोहानी ने फिक्शन निगारी में बहुत नाम कमाया। तकरीबन उर्दू रसाइल में आपके अफसाने और नावल किस्तवार छपते रहे। डाइजेस्ट पढ़ने वालों में इफ़त मोहानी का नाम काफ़ी मकबूल था। इतनी ज़्यादा तादाद में नावल और अफसानों का मिलना ये बताता है कि वो लगातार लिखती रहीं। इनकी तहरीरों में रवानी हुआ करती थी। अफसानवी नसर के अलावा गैर अफसानवी नसर में भी इफ़त मोहानी तबा आजमाई करती नजर आई। इन्होंने कई मजामीन लिखे। इन्होंने आम तौर पर समाजी नफ्सियाती मौजूआत पर मजामीन तहरीर किए। इनके मजामीन माहनामा हरीम, माहनामा सबा और रोज़नामा सियासत में भी छप चुके हैं, जिनमें चंद ये हैं: अलवी साहब एक मुनफर्द और साहब तर्ज मुतरजम, माहनामा सरपंच, लखनऊ। सिन्फ नाजुक अलावा इकबाल की नज़र में पूनम हैदराबाद सन 1967 एक यादगार रसाइल अरमुगान खालिद सफ़र लखनऊ के तासरात माहनामा मरियम लखनऊ माँ जून। अलगर्स इफ़त मोहानी उर्दू दुनिया का एक मकबूल नाम है।
1: समाइन, अभी आप समाप्त कर रहे थे मतसहल हमें जानो सिलसिले के तहत तकरीर बउनवान इफ़त मोहानी, जिसे पेश कर रही थी मोहतरमा सना अलमास।

FM 101.9 MHz पर सामईन आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नैरंग। स्टूडियोज की घड़ी में 9:48 हो चुके हैं। नैरंग की इस बज़्म को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं सुरेले गीतों से सजा प्रोग्राम गीत सुरेले गाता जा। इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे जिंदगी की और साथ ही साथ हम आपको सुनाएंगे पुराने हिंदी फिल्मी गीत।

आज हम बात करेंगे उस मौजू पर जो हम सब का साझा हुआ है, यानी जिंदगी। दोस्तों, जिंदगी असल है क्या? कहते हैं कि जिंदगी एक ऐसी किताब है जिसका हर दिन एक नया वर्क उलटता है। कभी कहानी खुशी के रंगों से भरी होती है और कभी आंसुओं की नमी से वर्क भारी हो जाते हैं। पर याद रखिए, अंधेरी रात के बाद ही सवेरे का उजाला ज्यादा रोशन महसूस होता है। आइए सुनते हैं ये सदाबहार नगमा।

दोस्तों, जिंदगी एक ऐसी पहेली है जिसे सुलझाते सुलझाते हम जीना सीख जाते हैं। जनाब, जिंदगी बहुत मुख्तसर है, इसे भरपूर जिए, लोगों में आसानियां बांटें और खुद भी खुश रहे। जैसे किसी ने कहा है, जिंदगी फूल है, इसे महकना चाहिए, गमों की धूप में भी इसे चहकना चाहिए। क्या आपने कभी गौर किया है कि जिंदगी का असल हुस्न उसके उतार चढ़ाव में ही छुपा है? जैसे दिल की धड़कन की लकीर, यानी ईसीजी जो होती है, जब तक ऊपर नीचे होती रहती है, इंसान जिंदा रहता है। जिस दिन वो सीधी हो जाए, जिंदगी खत्म हो जाती है। तो अगर आज आपकी जिंदगी में थोड़ी मुश्किल है तो मुस्कुराइए, क्योंकि ये इस बात की अलामत है कि आप जिंदा है। दोस्तों, बज्म में होगी और भी बातें, लेकिन इस खूबसूरत से गीत के बाद।

बिल्कुल, वाह, किशोर कुमार की आवाज़। जिंदगी में जो मौके एक बार चले जाते हैं वो वाकई दोबारा नहीं आते। जिंदगी कभी आसान नहीं होती, पर हर मुश्किल बेकार नहीं होती। जो सब्र से काम ले इंसान, उसकी हार भी हार नहीं होती। जिंदगी हमें गिरने के लिए नहीं, बल्कि हर बार गिर कर संभलना सीख

हमें गिरने के लिए नहीं बल्कि हर बार गिरकर संभलना सिखाने के लिए आजमाती है, और जब हम संभल कर दोबारा खड़े होते हैं तो वही जिंदगी हमें एक खूबसूरत तोहफा लगने लगती है। इसी हिम्मत और जोश को आवाज दी है इस क्लासिक गीत ने, जो आज भी हर उदास दिल की धड़कन तेज करता है। आइए सुनते हैं, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। इस गीत को आवाज दी है किशोर कुमार ने।

वाह, किशोरदा की जादुई आवाज़ और मजरूह सुल्तानपुरी साहब के लिखे हुए ये हौसलामंद बोल, वाकई जो हार नहीं मानता, मंजिल खुद उसके कदम चूमती है। जिंदगी की दौड़ में दूसरों से आगे निकलने के बजाय खुद से बेहतर बनने की कोशिश करें। कल आप जहाँ थे, आज उससे एक कदम आगे हो, यही असल कामयाबी है। इसी बात पर मुझे फराज साहब का ये शेर याद आ रहा है। सुना है जिंदगी इम्तिहान लेती है, सुना है जिंदगी इम्तिहान लेती है, पर यहाँ तो इम्तिहानों ने जिंदगी ले ली। दोस्तों, हम अक्सर जिंदगी को कल के लिए बचा कर रखते हैं। हम सोचते हैं कि जब नौकरी मिल जाएगी तब जिएंगे, जब घर बन जाएगा तब खुश होंगे, या जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तब सुकून से बैठेंगे। लेकिन सच तो ये है कि जिंदगी कल का नाम नहीं, जिंदगी

पल का नाम है जो अभी के आपकी मुट्ठी में है। जिंदगी किसी स्टेशन पर खड़ी ट्रेन का नाम नहीं कि आप इंतजार करें, बल्कि ये तो वो सफर है जो खिड़की से नजर आने वाले मनाजिर की तरह तेजी से गुजर रहा है। अगर आप मनाजिर देखने के चक्कर में पड़े रहें तो सफर कट जाएगा, और अगर मंजिल की फिक्र में रहें तो रास्ते की खूबसूरती खो देंगे। जैसे किसी ने क्या खूब कहा है, जिंदगी इतनी मुख्तसर है कि उसे उदासी में जाय करना भी बेवजह है। इसी फलसफे को बड़ी खूबसूरती से एक नगमे में ढाला गया है जो हमें याद दिलाता है कि जो है बस अभी है। आइए सुनते हैं ये शाहकार गीत जिसके बोल है आने वाला पल, और ये लिया गया है फिल्म गोलमाल से।

FM 101.9 MHz पर आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नैरंग। स्टूडियोज की घड़ी में 10:15 और 15 सेकेंड्स हो चुके हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जिंदगी की और साथ ही साथ आपको सुना रहे हैं पुरानी हिंदी फिल्मी गीत। जिंदगी थक के गिरती है तो ख्याल आता है, जिंदगी थक के गिरती है तो ख्याल आता है, जानलेवा है ला हासिल की तमन्ना करना। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि कीमती चीज क्या है? पैसा, शोहरत या बड़ा घर? लेकिन सच तो ये है कि जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें मादी चीजें नहीं बल्कि वो लोग याद आते हैं जिन्होंने हमारे मुश्किल वक्त में हमारा हाथ थामा था। जिंदगी अकेले गुजारने का नाम नहीं बल्कि ये तो उन रिश्तों का मजमुआ है जो उसे जीने के काबिल बनाते हैं। कभी माँ की दुआ, कभी बाप का मजबूत सहारा, कभी बहन भाइयों की नोकझोंक और कभी किसी खास दोस्त का साथ, यही वो फूल है जिनसे हमारी जिंदगी का बाग महकता है। शायर ने क्या खूब कहा है, जिंदगी की हसल हकीकत तो मोहब्बत है फराज, जिंदगी की असल हकीकत तो मोहब्बत है फराज, बाकी सब तो महज जीने का बहाना है। रिश्तों की इसी मिठास और जिंदगी की खूबसूरती को बयान करता ये सदाबहार नगमा जो हर दिल की आवाज़ है, आइए सुनते हैं।

दोस्तों कहते हैं जिंदगी सही में जब एक बार हम हारते हैं दोबारा उस हार को जीत में बदलने के लिए मुसलसिल जदोजहद हम करते रहते हैं। 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नए रंग। स्टूडियोज की घड़ी में 10:22:33 हो चुके हैं। जिंदगी फिर कभी ना मुस्कुराई बचपन की तरह, जिंदगी फिर कभी ना मुस्कुराई बचपन की तरह, मैंने मिट्टी भी जमा की खिलौने भी लेकर देखे। जी हाँ दोस्तों, हम सब बड़े तो हो गए लेकिन क्या हम वाकई बड़े होना चाहते थे? आज जब हम ऑफिस की फाइलों, बिलों की अदायगी और जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे होते हैं तो दिल करता है कि काश काश कोई हमें वो कागज़ की कश्ती और बारिश का पानी लौटा दे। वो वक्त जब सबसे बड़ा गम सिर्फ होमवर्क मुकम्मल करना होता था और सबसे बड़ी खुशी गली में खेलना या आइसक्रीम वाले की घंटी सुनना था। जिंदगी तब कितनी सादा और सच्ची थी। सच तो ये है कि हमने बड़े होकर सिर्फ सुकून खोया है, वरना जिंदगी तो उसी बचपन के एक दिन में पूरी मिल जाया करती थी। जैसे गुलजार साहब ने क्या खूब लिखा है, वो बचपन की नींद वो माँ की लोरी, वो बचपन की नींद वो माँ की लोरी, अब तो जागकर भी ख्वाब पूरे नहीं होते। आइए इसी मासूमियत को एक बार फिर जीतने और लाजवाल नगमे के साथ जो हर किसी को अपने बचपन में ले जाता है, आइए सुनते हैं ये खूबसूरत सी गज़ल जगजीत सिंह की आवाज़ में।

वाह, इस गजल ने तो आंखें नम कर दी। वो मिट्टी की खुशबू और वो बेफिक्री, कहाँ खो गए हम। कागज की कश्ती थी, पानी का किनारा था, खेलने की मस्ती थी, दिल ये आवारा था। कहाँ आ गए इस समझदारी के दलदल में, कहाँ आ गए इस समझदारी के दलदल में। वो नादान बचपन भी कितना प्यारा था। दोस्तों, जिंदगी भागने का नाम नहीं, आज घर जाकर अपने बच्चों के साथ बच्चा बनकर खेले, या अपने पुराने स्कूल के दोस्त को फोन करके वो पुरानी शरारतें याद करे, यकीन जानिए आपकी थकन मिनटों में गायब हो जाएगी। अब तक समय हमने बात की माजी की यादों की और हाल के लम्हों की, लेकिन जिंदगी का एक और रुख भी है, और वो है ख्वाब। वो ख्वाब जो हमें सुबह बिस्तर से उठने पर मजबूर करते हैं, वो मंजिलें जिनकी जुस्तजू में हम थकते नहीं। लोग कहते हैं कि ख्वाब सिर्फ बंद आंखों से देखे जाते हैं, लेकिन सच तो ये है कि असल ख्वाब वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। जिंदगी तब तक जवान रहती है जब तक आपकी आंखों में कोई तमन्ना बाकी हो। जिस दिन इंसान ने ख्वाब देखना छोड़ दिए, समझो उसने जीना छोड़ दिया। जैसे किसी ने क्या खूब कहा है, मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। जिंदगी हमें हर रोज एक नया मौका देती है कि हम अपने ख्वाबों की तरफ एक कदम और बढ़ाएं। तो अगर आज हम अपने ख्वाबों की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं और नाकाम हो भी जाए, तो याद रखिए ये आपका दी एंड नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत का पेशकीमा है। आइए सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

दोस्तों, अब तक हमने बचपन की मासूमियत, जवानी के ख्वाब, रिश्तों की मिठास और तन्हाई के सुकून पर बात की। लेकिन अगर मैं इस पूरी गुफ्तगू को एक जुमले में समेटना चाहूँ तो जिंदगी सिर्फ आज का नाम है। हम कल की फिक्र में हलकान हो जाते हैं और गुजरे हुए कल के गम में घुलते रहते हैं। लेकिन सच तो ये है कि जिस सांस में हम अभी जी रहे हैं, वही हमारी असल कायनात है। जिंदगी एक तोहफा है, इसे शिकायतों में नहीं, शुक्रगुजारी में गुजारना चाहिए। जैसे किसी दाना ने क्या खूब कहा था, जिंदगी को देखो तो ये एक समंदर है और हम सब इसकी लहरें हैं। कभी उभरते हैं, कभी मिट जाते हैं, लेकिन समंदर हमेशा रहता है। आइए सुनते हैं एक खूबसूरत सा गीत। बज्म में और भी होगी बातें जिंदगी के उन्वान पर।

दोस्तों एक बात याद रखिए, अपनी नाकामियों का बोझ कभी किस्मत पर ना डालें। आज अगर आप अंधेरे में हैं तो चिराग खुद जलाएं, क्योंकि कायनात उनका रास्ता कभी नहीं रोकती जो चलना जानते हैं। समय, वक्त की सुइयां आज के इस तवील और जज्बाती सफ़र के इख्तिताम का इशारा दे रही है। मैं हूं आपकी दोस्त फहमिदा, और हमने आज ज़िंदगी के हर रंग को छू कर देखा है। आज की महफिल को यहीं समेटते हैं। आइए सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत मुकेश साहब की आवाज़ में।

स्टूडियोज की घड़ी में 10:55:30 हो रहे हैं। पयाम शब की पेशकश से पहले हम आपको कल के नैरंग के बज़्म के नशरियात की तफसील बताते हैं। कल के नैरंग के बज़्म में पेश किया जाएगा हरफ़ ताबिंदा, फिर होगा मुशायरा। कल के नैरंग के बज़्म में खुसूसी प्रोग्राम 90 साला आकाशवाणी का जो सफ़र है, इस उनवान पर खुसूसी प्रोग्राम पेश किया जाएगा। गीत सुरेले गाता जा और आखिर में पयामे शब। आइए सुनते हैं पयामे शब। तहरीर वो पेशकश है जैदी साहब की।

अब कोई इल्जाम न ढूंढो तुम मेरे लिए, अब कोई इल्जाम न ढूंढो, चाहा था तुम्हें एक यही इल्जाम बहुत है। सच्ची मोहब्बत किसी जुर्म से कम नहीं होती, क्योंकि इंसान जब किसी को दिल से चाहता है तो वह अपने जज्बात का कैदी बन जाता है। अगर मोहब्बत खलूस से की जाए तो फिर सफाइयों और इल्जामों की जरूरत नहीं रहती। असल मोहब्बत वही है जो इंसान के किरदार, वफादारी और खामोश कुर्बानियों से जाहिर हो जाए। कभी कभी किसी को चाह लेना ही जिंदगी का सबसे बड़ा एतराफ बन जाता है, और यही एतराफ इंसान की सबसे खूबसूरत सच्चाई भी है।

समाइन, अभी आप समाप्त कर रहे थे पयाम शब। तहरीर व पेशकश थी जनाब जैदी की। FM 101.9 MHz पर ये आकाशवाणी हैदराबाद है। इसी के साथ नैरंग की ये बज़्म अपने इख्तिताम को पहुंचती है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का यह प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। तब तक अपना और अपने प्यारों का और उनका भी ख्याल रखिए जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। शब्बा खैर।

0: ये आकाशवाणी हैदराबाद है, FM 101.9 MHz पर। स्टूडियोज की घड़ी में 11 बजने ही वाले हैं। चंद ही लम्हों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी और अंग्रेजी समाचार बारी बारी से नशर किए जाएंगे। के साथ मैं सर फिरोजी। भारत और इटली ने आज कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए 15 महत्वपूर्ण समझौते किए। इन समझौतों पर आज रोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया। एक अन्य समझौता लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास पर केंद्रित है। दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की है। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि दोनों देश जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानते हैं।
1: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए।
0: इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एग्रीकोला पदक से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि ये सम्मान भारत के किसानों, मछुआरों, वैज्ञानिकों और कृषि क्षेत्र से जुड़े अन्य कर्मियों के योगदान की पहचान है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि मोदी सरकार ने कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के एक मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया है। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि ये ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। रक्षा मंत्री ने सोल में भारत दक्षिण कोरिया रक्षा उद्योग व्यापार गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता भी की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से निकालने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने की घोषणा की है। सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने के एक समारोह के दौरान नाबन्ना में उन्होंने कहा कि अब घुसपैठियों को सीधे सीमा सुरक्षा बल के हवाले कर दिया जाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी

0: ने आज नई दिल्ली में असम में 4000 किलोमीटर से अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की गुणवत्ता और रखरखाव कार्यों की समीक्षा की। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी है। कोलकाता ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Aparajita Nair. India and Italy today finalized 15 outcomes across diverse sectors. The agreements were signed following delegation-level talks

का संगीत और आनंद बख्शी का लिखा ये गीत। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर, जिसे आप सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम है गीत मेरे मनमीत और मैं हूँ आपके साथ रितिका।

राजेश खन्ना और हेमा मालिनी पर फिल्माया ये गीत आपने सुना 1976 में आई फिल्म महबूबा से। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ आर डी बर्मन।

कल आज और कल फिल्म से आपने ये गीत सुना, किशोर कुमार की आवाज में शंकर जयकिशन का संगीत और हसरत जयपुरी का लिखा ये गीत।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

तो दोस्तों, गीत मेरे मनमीत में आज बस इतना ही। अपनी दोस्त रितिका को दीजिए इजाजत, पर आप बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ, जिसे आप सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। भारत और इटली ने कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए 15 महत्वपूर्ण समझौते किए। इन समझौतों पर रोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी समझौता किया। एक अन्य समझौता लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास पर केंद्रित है। दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की है। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि दोनों देश जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानते हैं।
1: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए।
0: इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया। गृहमंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एग्रीकोला पदक से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। श्री शाह ने कहा कि ये सम्मान देश के करोड़ों किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को समर्पित है। सुश्री सीतारामन ने कहा कि मोदी सरकार ने कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। श्री गोयल ने कहा कि ये सम्मान भारत के किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़े अन्य कर्मियों के योगदान की पहचान है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया है। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि ये ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। साइप्रस गणराज्य के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोदुलिदिस उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल के साथ 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर मुंबई पहुंचे। मुंबई हवाई अड्डे पर महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। साइप्रस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच शुक्रवार को बैठक होगी। दोनों नेता व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति जैसे विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी है। पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 147 रन बनाए थे। 148 रन के लक्ष्य के जवाब में ताजा समाचार मिलने तक कोलकाता नाइट राइडर्स ने 16 ओवर में 5 विकेट पर 130 रन बना लिए हैं।

दोस्तों आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुन सकते हैं एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूं अंजू आपके साथ और लेकर आई हूं आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम, जिसका नाम है निशिगंधा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। खामोश निगाहों से जब तुम बात करते हो तो ये फुर्सत के हर पल में बस तुम्हारी याद दिलाते हैं।

वो अपनी नशीली निगाहों से जब हमें देखते हैं, हम घबरा कर आंखें चुका लेते हैं। कौन मिलाए उनकी निगाहों से निगाहें? सुना है वो आंखों से ही अपना बना लेते हैं।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: दोस्तों, जिन आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल और कार्यक्रम है निशिगंधा। मैं हूं आपके साथ अंजू।
1: क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, अब क्या सुनाए।

तुमसे बिछड़कर तुमसे मिलना कुछ ये एहसास दिलाता है मुझे कि कुछ याद आता है मुझे, कि यूं ही किसी रोज मैंने तुम्हारे शहर में गुजारे, यूं ही कुछ रोज मैंने तुम्हारे शहर में गुजारे और देखकर चाय की टपरी मुझे याद आया तुम्हारी, और मैंने रुककर कहा एक कप चाय, और पीछे से आवाज आई अरे एक नहीं दो।

उठते हैं जब कदम तेरे, तो ये बहारें भी शर्मा जाती हैं। उठते हैं जब कदम तेरे, तो ये बहारें भी शर्मा जाती हैं। सामने जो आती है तू, तो चांद की चमक भी फीकी पड़ जाती है।

दोस्तों, ये कार्यक्रम का आखिरी गीत है। अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। 1:10 पर फिर से आपसे मुलाकात होगी। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। भारत और इटली ने कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए 15 महत्वपूर्ण समझौते किए। इन समझौतों पर रोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली

0: आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया। एक अन्य समझौता लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास पर केंद्रित है। दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की है। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि दोनों देश जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे। इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया। गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री मोदी को एग्रीकोला पदक से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। श्री शाह ने कहा कि ये सम्मान देश के करोड़ों किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को समर्पित है। सुश्री सीतारामन ने कहा कि मोदी सरकार ने कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। श्री गोयल ने कहा कि ये सम्मान भारत के किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़े अन्य कर्मियों के योगदान की पहचान है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया है। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि यह ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की घोषणा की है। राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने आयोग के संचालन के लिए 5 सदस्यीय पैनल को मंजूरी दी है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश राम अवतार सिंह को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये आयोग त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के लिए उचित कानूनी ढांचे का अध्ययन, मूल्यांकन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गठित किया गया है। अमरीकी सेना ने कहा कि उसने ओमान की खाड़ी में ईरानी झंडे वाले एक वाणिज्य तेल टैंकर पर चढ़कर उसकी जांच की। इस जहाज पर अमरीकी प्रतिबंधों के उल्लंघन का संदेह था। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि एमटी सेलेस्टियल सी नामक टैंकर की तलाशी ली गई और उसका मार्ग बदल दिया गया। ट्रंप प्रशासन द्वारा ईरानी जहाज पर नाकेबंदी शुरू किए जाने के बाद ये लगभग 5वां पोत है जिस पर इस तरह की कार्रवाई की गई है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में खेले गए मैच में मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 147 रन बनाए। आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Ashish Abraham. India and Italy have finalized 15 outcomes across diverse sectors. The agreements were signed following delegation-level talks between PM Modi and his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome yesterday. The outcomes marked the elevation of bilateral relations to a special strategic partnership. Both sides also inked several memorandums of understanding to deepen cooperation in key areas, including critical minerals,

0: defense, agriculture, Ayurveda, science and technology, maritime transport and ports. India and Italy also agreed to strengthen coordination against tax crimes, money laundering and terror financing. In a press statement after the talks, PM Modi said, India-Italy Joint Strategic Action Plan 2025 to 2029 will provide a practical and futuristic framework for bilateral ties.
1: पिछले लगभग साढ़े तीन वर्षों में मुझे कई बार प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है. यह भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग और सामंजस्य को दर्शाता है. उनके नेतृत्व में हमारे संबंधों को नई गति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला है. मुझे खुशी है कि हम

दोस्तों, समय हुआ 1:11 और 9 सेकेंड। ये समय है कार्यक्रम गीत सुहाने का। मैं हूँ एक बार फिर से आपके साथ अंजु। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में और आप सुनेंगे बहुत ही मधुर गीत। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

कहानी शुरू हुई थी एक छोटी सी मुलाकात से, अब बात आगे बढ़ गई है दिन रात की हर एक बात से। तुम्हारी हर एक मुस्कान पर दिल हार बैठे हैं हम अब, और कोई ख्वाहिश नहीं इस हसीन शुरुआत के बाद।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

शायद तुम्हें मालूम नहीं कि खूबसूरती की इंतहा हो तुम, शायद तुम्हें मालूम नहीं कि खूबसूरती की इंतहा हो तुम, पर मुझे तो लगता है ये कोई दुआ है जो कबूल हो गई है।

मैंने उससे पूछा, क्या मुझ पर एतबार है? तो उसने कहा, तेरी हर एक बात पर बहुत एतबार है। मैंने पूछा, अच्छा इसकी वजह? तो उसने कहा, वजह बस इतनी सी है कि तुमसे बहुत प्यार है।

0: 90 वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
1: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
0: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
1: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग, सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर।

दोस्तों, गीत सुहाने सुन रहे हैं आप अंजू के साथ, और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। सुना है तुम हर चीज का हिसाब रखते हो, फिर बताओ कि मेरी मोहब्बत का क्या हिसाब दोगे।

दूसरे कार्यक्रम का आखिरी गीत है अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार 2:10 पर रात सुर में लेकर एक बार फिर से रहूंगी आपके साथ सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। भारत और इटली ने कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए 15 महत्वपूर्ण समझौते किए हैं। इन समझौतों पर रोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया। एक अन्य समझौता लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास पर केंद्रित है। दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की है। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि

0: भारत और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025 to 2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि दोनों देश जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे। इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, मछली पालकों, पशुपालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया। गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री मोदी को एग्रीकोला पदक से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। श्री शाह ने कहा कि ये सम्मान देश के करोड़ों किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को समर्पित है। सुश्री सीतारामन ने कहा कि मोदी सरकार ने कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। श्री गोयल ने कहा कि ये सम्मान भारत के किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़े अन्य के योगदान की पहचान है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के एक मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया है। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि ये ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की घोषणा की। राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने आयोग के संचालन के लिए 5 सदस्यीय पैनल को मंजूरी दी है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश राम अवतार सिंह को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये आयोग त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के लिए उचित कानूनी ढांचे का अध्ययन और मूल्यांकन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गठित किया गया है। अमेरिका की सेना ने कहा है कि उसने ओमान की खाड़ी में ईरानी झंडे वाले एक वाणिज्यिक तेल टैंकर पर चढ़कर उसकी जांच की। इस जहाज पर अमेरिकी प्रतिबंधों के उल्लंघन का संदेह था। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि एमटी सेलेस्टियल सी नामक टैंकर की तलाशी ली गई और उसका मार्ग बदल दिया गया। ट्रंप प्रशासन द्वारा ईरानी जहाज पर नाकेबंदी शुरू किए जाने के बाद ये लगभग 5वां पोत है जिस पर इस तरह की कार्रवाई की गई है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में खेले गए मैच में मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 147 रन बनाए। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 19वें ओवर में जीत हासिल कर ली। मनीष पांडे को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Ashish Abraham. India and Italy have finalized 15 outcomes across diverse sectors. The agreements were signed following delegation-level talks between PM Modi and his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome yesterday. The outcomes marked the elevation of bilateral relations to a special strategic partnership. Both sides also inked several memorandums of understanding to deepen cooperation in key areas including critical minerals, defense, agriculture, Ayurveda, science and technology, maritime transport and ports. India and Italy also agreed to strengthen coordination against tax crimes, money laundering and terror financing. In a press statement after the talks, PM Modi said, India-Italy Joint Strategic Action Plan 2025-2029 will provide a practical and futuristic framework for

0: bilateral ties.
1: दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं. हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है. मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है. हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे.
0: Later in the day, PM Modi was conferred the prestigious Agricola Medal by the Food and Agricultural Organization at its headquarters in Rome. The medal was presented by FAO Director General Qiu Dongyu. Union Home Minister Amit Shah has congratulated PM Modi for being honored with Food and Agriculture Organization's Agricola.

समय हुआ है 2:11 और 2 सेकंड और ये समय है कार्यक्रम रात सुरमई का। मैं एक बार फिर से अंजू करती हूँ आपको बहुत बहुत स्वागत। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

जख्म दिल अभी भी वैसे का वैसा ही है, जख्म दिल अभी भी वैसे का वैसा ही है, और तेरे बिना जीना जीना भी कोई जीना सा है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

अब लौट के मत आना, अब कोई उम्मीद बाकी नहीं। अब लौट के मत आना, अब कोई उम्मीद बाकी नहीं। वो रास्ता ही छोड़ दिया जहां तेरी कोई गली आती नहीं।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

खत अधूरे थे मगर वो चिट्ठियाँ अच्छी लगी। कागजों से सही नज़दीकियाँ अच्छी लगी। रात भी खामोश थी और चांद भी गमगीन था। आँख में डोरे लिए वो सुर्खियाँ अच्छी लगी। जिक्र में भी नाम उनका हम न ले पाए कभी। प्यार में इन बंदिशों की चुप्पियाँ अच्छी लगीं।

हम तो बुत बन गए तेरे इंतजार में, हम तो बुत बन गए तेरे इंतजार में, एक तुम आए भी नहीं और मेरी जान भी ले गए।

0: दोस्तों अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। 3:10 पर पंकज गोस्वामी रहेंगे आपके साथ कार्यक्रम हमराही लेकर। मुझे अनुमति दीजिए, नमस्कार, शुभरात्रि।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। भारत और इटली ने कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए 15 महत्वपूर्ण समझौते किए हैं। इन समझौतों पर रोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया। एक अन्य समझौता लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास केंद्र पर केंद्रित है। दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की है। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला लिया है।
2: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि

0: दोनों देश जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे। इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन के सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया। गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री मोदी को एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। श्री शाह ने कहा कि ये सम्मान देश के करोड़ों किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को समर्पित है। सुश्री सीतारामन ने कहा कि मोदी सरकार ने कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के एक मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया है। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि ये ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले की फलता विधानसभा सीट पर आज पुनः मतदान होगा। दो निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने मंगलवार को घोषणा की कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि नाम वापस लेने की समय सीमा समाप्त हो चुकी है, इसलिए औपचारिक रूप से उनका नाम मतपत्र पर बना हुआ है। भाजपा के उम्मीदवार देवांशु पांडा हैं। कांग्रेस ने अब्दुल रजाक मोल्ला को मैदान में उतारा है, जबकि CPIM ने शंभुनाथ कुर्मी को उम्मीदवार बनाया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की घोषणा की है। राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने आयोग के संचालन के लिए 5 सदस्यीय पैनल को मंजूरी दी है। अमरीकी सेना ने कहा है कि उसने ओमान की खाड़ी में ईरानी झंडे वाले एक वाणिज्यिक तेल टैंकर पर चढ़कर उसकी जांच की। इस जहाज पर अमरीकी प्रतिबंधों के उल्लंघन का संदेह था। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि MT सेलेस्टियल सी नामक टैंकर की तलाशी ली गई और उसका मार्ग बदल दिया गया। IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। मनीष पांडे को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इससे पहले कोलकाता नाइट राइडर्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष इब्राहिम।

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर अब शुरू होता है कार्यक्रम हमराही। मैं हूं पंकज आपके साथ और आधी रात के 3:11 हो चुके हैं, तो इस शो की शुरुआत करते हैं और फिर दो गानों के बाद मैं आपसे मिलता हूं, लेकिन अभी के लिए बरसात की एक रात मूवी से इस गाने से ही इस शो को शुरू करते हैं और लता जी और किशोर कुमार की आवाज़ में। तो अभी इन गानों का मजा लीजिए, दो गानों के बाद आपसे मिलता हूँ।

इन फिल्मों का दौर बेशक बीत गया हो, लेकिन पुराने गानों का यह दौर कभी नहीं बीतेगा, क्योंकि इन गानों ने मानो अमृत पी लिया हो। आधी रात की इस खामोशी में मैं आपका साथ देने के लिए मैं पंकज हूँ आपके साथ, सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर शो है हमराही, और जिसमें पूरे घंटे मैं प्ले करूंगा पुराने डुएट्स गाने आपके लिए। वैसे बड़े दिनों बाद मैं आपसे मिल रहा हूँ और सच में बहुत मिस किया मैंने आपको और इन गानों को, सच्ची। तो तसल्ली से इन हसीन गीतों का मजा लीजिए और मैं इन दो गानों के बाद आपसे दोबारा मिलता हूँ।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

जी और किशोर कुमार की आवाज़ थी, आरडी बर्मन का म्यूजिक और गुलजार के बोल। वैसे अगर चांद की चोरी इतनी आसान होती तो हर कोई उसे अपने पसंदीदा मर्द या महबूबा को दे देता लेकिन खैर, वैसे अपने लवी डवी के चेहरे को चांद से कंपेयर करके ना उसे खुश तो किया ही जा सकता है, इतना तो लोग करते ही हैं। वैसे मैं हूं पंकज, आपके साथ हमराही शो में सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर, और हमेशा उसे ही अपना हमराही बनाइए जिसे आप बेपनाह मोहब्बत करते हो। यकीन मानिए आज के टाइम में प्यार मिलना सच में बहुत मुश्किल बात है, और अगर मिल जाए तो फिर आपसे ज़्यादा लकी कोई नहीं।

बहुत खूबसूरत ये गाना था, खयाम का म्यूजिक निदा फासली के बोल और नाखुदा मूवी से ये गाना था, नितिन मुकेश और लता जी की आवाज में। हमारी दिक्कत पता ये है कि किसी से भी अपने प्यार का इजहार करने में ना हम बहुत टाइम लगाते हैं, या फिर हद से ज्यादा ये सोचते हैं कि पता नहीं क्या होगा और हम कहीं रिजेक्ट तो नहीं हो जाएंगे, मतलब और भी बहुत सारी ओवर थिंकिंग हम करते हैं। और कई बार तो इसी उथल पुथल में जो है दूसरा इंसान अपनी राह ही बदल लेता है और फिर आप एक कमाल का इंसान अपनी ज़िंदगी से हमेशा के लिए खो देते हैं। प्यार ही तो है, कह दो ताकि आपको चुप रहने का ये मलाल ना हो कि भाई हमने समय रहते ये बोला नहीं। मैं हूँ पंकज, हम राही शो में सिर्फ आपके साथ, आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। अपने आसपास ना आपको कई ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनको ये गिल्ट रहा होगा कि काश हमने समय रहते अपने पसंदीदा शख्स से अपने प्यार का इजहार कर दिया होता, लेकिन उन्होंने कहा नहीं और अब सिचुएशन अलग है।

जी मूवी से ये गाना था मोहम्मद रफ़ी और आशा जी की आवाज़ में, मजरूह सुल्तानपुरी के लिरिक्स थे और आर डी बर्मन का म्यूज़िक था। वैसे एक हेल्दी रिश्ते की पहचान पता ये भी है कि उसमें थोड़ी बहुत तू-तू मैं-मैं भी हो, और अगर ये नहीं है ना तो सच मानिए रिश्ता ठंडा है। बाकी मौसम तो गर्म है, इस टाइम भी आधी रात हो रही है और अभी भी गर्मी तो है ही अब क्योंकि मई की ये रात है। बाकी अगले घंटे मैं पंकज आपसे फिर मिलता हूँ दूसरे शो अरुणिमा में। तो इसी तरह गाने एंजॉय करते रहिए हमरा ही शो के, ये जो दो गाने और बचे हुए हैं, और उसके बाद अगले घंटे में आपसे मिलूंगा सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। आंखें बंद कीजिए, इस गाने में खो जाइए। लेकिन अगर आप कहीं बाहर ट्रैवल कर रहे हैं, गाड़ी वाड़ी चला रहे हैं, सो प्लीज़ ध्यान से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। भारत और इटली ने कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए 15 महत्वपूर्ण समझौते किए हैं। इन समझौतों पर रोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया है। एक अन्य समझौता लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास पर केंद्रित है। दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की है। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि दोनों देश जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे। इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि

0: इस संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया। गृहमंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री मोदी को एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। श्री शाह ने कहा कि सम्मान देश के करोड़ों किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को समर्पित है। सुश्री सीतारामन ने कहा कि मोदी सरकार ने कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के एक मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया है। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि ये ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले की फलता विधानसभा सीट पर आज पुनः मतदान होगा। दो निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने मंगलवार को घोषणा की कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि नाम वापस लेने की समय सीमा समाप्त हो चुकी है, इसलिए औपचारिक रूप से उनका नाम मतपत्र पर बना हुआ है। भाजपा के उम्मीदवार तिबांशु पांडा हैं। कांग्रेस ने अब्दुल रज्जाक मोल्ला को मैदान में उतारा है, जबकि CPIM ने शंभुनाथ कुर्मी को उम्मीदवार बनाया है। अमरीका और ईरान के बीच तनाव के बीच अमरीकी नौसेना ने ओमान की खाड़ी में ईरानी झंडे वाले एक वाणिज्यिक तेल टैंकर को रोककर उसका मार्ग बदल दिया। अमरीकी सेंट्रल कमांड के अनुसार MT सेलेस्टियल सी नामक टैंकर की तलाशी ली गई। इस पर ईरानी बंदरगाह की ओर जाने का संदेह था। अमरीका ने इस साल अप्रैल में ईरानी जहाजों पर नाकाबंदी लागू की थी। इसके बाद से अब तक 91 वाणिज्यिक जहाजों का मार्ग बदला जा चुका है, जबकि 4 जहाजों को रोका गया है। IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में खेले गए मैच में मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 147 रन बनाए। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 19वें ओवर में जीत हासिल कर ली। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Ashish Abraham. Prime Minister Narendra Modi has returned to India after successfully concluding the final leg of his five-nation tour in Italy, where both nations announced the upgradation of their ties to a special strategic partnership, marking a major step forward in bilateral relations. The two countries signed several agreements in areas including agriculture, critical minerals, Ayurveda, science and technology, and the facilitation of mobility for Indian nurses from India to Italy. Both nations also signed MOUs to curb tax crimes, money laundering, and terror financing. In a joint press statement with his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome yesterday, Prime Minister Modi said, "Italy is renowned worldwide for design and precision, while India is known as a powerhouse of scale, talent, and affordable innovation." He added that India and Italy will move forward on the principle of design and develop in India and Italy, deliver for the world. During the joint statement, Mr. Modi highlighted that both countries will work together on shipping, port modernization, logistics, and the blue economy. Prime Minister Meloni said the aim is to enhance the complementarity between the two countries in many sectors. PM Modi has also been conferred the prestigious Agricola Medal by the Food and Agriculture Organization in Rome. Union Home Minister Amit Shah has congratulated Prime Minister Modi for being honored with Food and Agriculture Organization's Agricola Medal. In a social media post, Mr. Shah said, "This honor is a tribute to millions of Indian farmers and all those associated with the agricultural sector." Union Minister for Commerce and Industry Piyush Goyal and Union Finance Minister Nirmala Sitharaman have congratulated PM Modi over the conferment of FAO's honor. Cyprus President Nikos Christodoulidis arrived in Mumbai last evening on a 3-day official visit to India, accompanied by a high-level delegation. He was received at the airport.

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप। सुबह के 4:10 हुए हैं और अब शुरू होता है अगला कार्यक्रम अरुणिमा, और मैं हूं पंकज आपके साथ। और इन दो गानों के बाद आपसे मैं मिलता हूं। अभी के लिए चोर पुलिस मूवी से ये गाना सुनिए लता जी की आवाज में।

रविंद्र जैन के बोल हो और उन्हीं का ही संगीत हो और गाना अच्छा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। सुरेश वाडकर और हेमलता की आवाज थी। पहली फिल्म का ये गाना सुना आपने अरुणिमा शो में, सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर मेरे यानी पंकज के साथ। सुबह के 4:18 और 37 सेकंड हुए हैं और स्टूडियो से एकदम लाइव जुड़ा हुआ हूँ मैं आपसे। तो इन दो गाने के बाद मैं आपसे फिर से मिलूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बस ये कहूंगा कि जिंदगी में ना कुछ कामों को पूरा होने में थोड़ा सा समय लगता है, तो सब्र करना जरूरी है ताकि काम अच्छा हो।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

ये गाना इस तरह से बना हुआ है कि चाहे तो इसे ढलते हुए दिन के समय सुनो तो भी अच्छा लगेगा, और उगते हुए सूरज के टाइम पर सुनो यानी इस टाइम तो भी अच्छा ही लगेगा। कुछ गानों की फितरत ही बहुत खूबसूरत होती है। सलील चौधरी ने इस गाने को म्यूजिक दिया था, योगेश ने लिखा, मुकेश ने गाया और आनंद फिल्म का ये गाना था। इस जिंदगी की पता है कुछ घटनाओं को हम बहुत ज़्यादा अपने ऊपर इतना सीरियसली हावी कर लेते हैं और कि अपने प्रेजेंट टाइम को भी हम जो है ख़राब कर लेते हैं। हालांकि गलत बात है, और एक बात ध्यान रखनी है हम सभी को, लाइफ की नहीं कि एक्सपायरी डेट फिक्स है, जाना तो पड़ेगा लेकिन कब ये तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि कई बार तो उस टाइम से पहले ही कई लोग चले जाते हैं। तो जाना तो मतलब है ही, लेकिन साथ कुछ जाना नहीं है, तो फिर इसे जो है अच्छे से जीना चाहिए और कभी भी किसी की दूसरों की ज़िंदगी में जो है हमें ख़राब नहीं करना चाहिए, और यही इंसानियत है। अरुणिमा शो में मैं हूँ पंकज आपके साथ, सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। हम दूसरों को कांटे नहीं बल्कि फूल दें।

अपने पॉजिटिव वर्ड से किसी को उत्साह से भर देना भी जो है वो भी बहुत बड़ी बात है, और ऐसा ही ये एक गाना था अंधा कानून मूवी का। किशोर दा की आवाज में आनंद बख्शी के बोल थे और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। हंसना रोना जीवन के सिक्के के देखिए दो पहलुओं की तरह है, और यही हमारी जिंदगी को जो है ना बैलेंस भी रखता है, लेकिन शर्त बस इतनी है कि ये दोनों इमोशंस जो है हमारे ऊपर भारी ना पड़ जाए। इसका ध्यान तो देखिए हमें रखना पड़ेगा, क्योंकि कई बार हम इतना एक्स्ट्रा बर्डन अपने ऊपर अपने माइंड के ऊपर ले लेते हैं कि फिर उसके बाद जो है शरीर में धीरे धीरे रोग पैदा होने लगते हैं, कभी सिर दर्द होने लगता है, कभी कुछ चिड़चिड़ाहट आ जाती है। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको थोड़ा सा साइड करना चाहिए, ताकि आप जिंदगी के जो इम्पॉर्टेंट पल हैं उनको ऐसे वेस्ट ना कर पाएं। आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर मैं हूं पंकज आपके साथ, और शो का नाम है अरुणिमा। अब बाकी तो खैर और कुछ अनलिमिटेड तो नहीं लेने चाहिए दुख, लेकिन हाँ एक चीज़ है कि आप गाने पूरे अनलिमिटेड इंजॉय कर सकते हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। अभी के लिए जगजीत जी की आवाज़ में ये गाना।

0: यादों के रंग
1: सुनिए एफएम गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग
0: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
1: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग सिर्फ एफएम गोल्ड 100.1 पर।

खुशी के मारे पांव जमीन पे ना पड़े वो अलग बात है, लेकिन गर्मियों में तो पांव जमीन पर ही रहते हैं क्योंकि जमीन इतनी गर्म होती है और ठंडक तो कहीं होती नहीं है, तो इसलिए जमीन पर ही रखने पड़ते हैं। लता जी की आवाज इस टाइम सुनना यानी सोने पर सुहागा, और अब जो है थोड़ी देर में सूरज की सोने जैसी रंगत जो है वो आसमान में छा जाएगी क्योंकि सुबह के 4:54 हो चुके हैं और मई का महीना चल रहा है, जल्दी अब दिन निकल आता है। अरुणमय शो का टाइम जो है बस कुछ मिनटों में पूरा होने वाला है और मैं पंकज आपसे अगले घंटे मिलूंगा यानी आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर। तो ये गाना इस शो का लास्ट है, तो आप इस गाने को एंजॉय करिए और अगले घंटे दूसरे शो

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। भारत और इटली ने कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए 15 महत्वपूर्ण समझौते किए हैं। इन समझौतों पर रोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया है। एक अन्य समझौता लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास पर केंद्रित है। दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों, धनशोधन और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की है। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि दोनों देश जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे। इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया। गृहमंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री मोदी को एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। श्री शाह ने कहा कि ये सम्मान देश के करोड़ों किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को समर्पित है। सुश्री सीतारामन ने कहा कि मोदी सरकार ने कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के एक मजबूत, आत्मविश्वासी और

0: सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया है। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि यह ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले की फलता विधानसभा सीट पर आज पुनः मतदान होगा। दो निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने मंगलवार को घोषणा की कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि नाम वापस लेने की समय सीमा समाप्त हो चुकी है, इसलिए औपचारिक रूप से उनका नाम मतपत्र पर बना हुआ है। भाजपा के उम्मीदवार देबांशु पांडा हैं। कांग्रेस ने अब्दुल रजाक मोल्ला को मैदान में उतारा है, जबकि सीपीआईएम ने शंभुनाथ कुर्मी को उम्मीदवार बनाया है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव के बीच अमेरिकी नौसेना ने ओमान की खाड़ी में ईरानी झंडे वाले एक वाणिज्यिक तेल टैंकर को रोककर उसका मार्ग बदल दिया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार एमटी सेलेस्टियल सी नामक टैंकर की तलाशी ली गई। इस पर ईरानी बंदरगाह की ओर जाने का संदेह था। अमेरिका ने इस साल अप्रैल में ईरानी जहाजों पर नाकाबंदी लागू की थी। अमेरिका का कहना है कि इस नाकाबंदी से ईरान को रोज करीब $50 करोड़ का नुकसान हो रहा है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। मनीष पांडे को प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया। आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Ashish P. Abraham. Prime Minister Narendra Modi returned to New Delhi after successfully concluding his visit to Italy, marking the final leg of his five-nation official tour. India and Italy yesterday announced the upgradation of their ties to a special strategic partnership, marking a major step forward in bilateral relations. The two countries signed several agreements in areas including agriculture, critical minerals, Ayurveda, science and technology, and facilitation of mobility of Indian nurses from India to Italy. Both nations also signed MOUs for curbing tax crimes, money laundering, and terror financing. In a joint press statement with his Italian counterpart, Giorgia Meloni, in Rome, Prime Minister Modi said that Italy is renowned worldwide for design and precision, and India's identity is of a powerhouse of scale, talent, and affordable innovation. Mr. Modi highlighted that both countries will work together on shipping, ports modernization, logistics, and the blue economy. Italian Prime Minister Giorgia Meloni also said that both nations are working hard on advanced manufacturing, infrastructure, energy, space, economy, and defense. India and Italy will celebrate 2027 as the year of culture and tourism to promote cultural exchanges and strengthen dialogue between the two ancient civilizations. Italian Prime Minister Giorgia Meloni said the initiative will help deepen mutual understanding and further strengthen cultural diplomacy between the two countries. She said, stronger ties between countries are measured not only through political and economic relations, but also through connections between people and societies. Prime Minister Narendra Modi was conferred the prestigious Agricola Medal by the Food and Agriculture Organization at its headquarters in Rome, Italy. Receiving the award, Mr. Modi dedicated the honor to India's millions of farmers, livestock rearers, fish farmers, agricultural scientists, and workers. The medal was presented by FAO Director General Q. Dongyu. Several union ministers, including Home Minister Amit Shah, Finance Minister Nirmala Sitharaman, and Commerce and Industry Minister Piyush Goyal, have congratulated PM Modi for being honored with the Agricola Medal. Home Minister Amit Shah noted that India has emerged as a global leader in the agricultural sector, and the country's agricultural model is setting a benchmark for the whole world. In West Bengal, re-poll will be held in the Falta Assembly constituency in South 24 Pergna's

सुबह हो चुकी है, 5:10 हो रहे हैं और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल। और अब शुरू होता है कार्यक्रम होड़ सुहानी मेरे यानी पंकज के साथ। इन दो गानों के बाद आपसे मिलता हूँ।

इस टाइम कितनी जल्दी उजाला हो जाता है ना. अब खैर गर्मियों में तो बहुत जल्दी दिन निकल आता है, दिन बड़े हो जाते हैं और रातें तो छोटी हो ही जाती हैं. खैर अभी आपने एक गाना सुना किशोरदा और आशा जी और अमित कुमार की आवाज़ में, कस्मे वादे मूवी से. इस गाने को लिखा था गुलशन बावरा ने और आर डी बर्मन का म्यूजिक था. 21 मई की एक गर्म सुबह है और भोर सुहानी शो में मैं पंकज हूँ आपके साथ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर. और मई में जो है गर्मी धीरे धीरे और तेज़ होगी और जून जुलाई की गर्मी की तो खैर बात ही मैं क्या बोलूँ. इसलिए आप एक काम करिएगा, मतलब मैं हमेशा ऐसे ही करता हूँ कि जितने भी बाहर के इंपॉर्टेंट काम होते हैं अगर वो हो सकें तो सुबह अर्ली मॉर्निंग जितना जल्दी हो सके उन कामों को फटाफट ख़त्म कर लेना चाहिए और दोपहर को ऑफिस या घर के जो काम होते हैं अंदर के जो काम होते हैं उनको कर लेना चाहिए, वही समझदारी होती है. तो खैर इन दो ठंडे ठंडे गानों के बाद मैं आपसे फिर मिलता हूँ. ये गाने ना एक्चुअली बिल्कुल ठंडी वाली फीलिंग देते हैं. सुंदर आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल, मैं पंकज, शो का नाम भोर सुहानी.

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी

और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।